साथियों, नई सोच, नई तकनीक और युवा शक्ति, इन्हीं से बनता है नया भारत का रास्ता। जी हाँ, युवा सपने देखे, ज्ञान को अपनाएं और देश के भविष्य को नई दिशा दें।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ जागृति जी, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर अपने नियत समय पर एक नए महापुरुष के जीवन परिचय को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती मनाई जाएगी, लेकिन कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए आज ही हम जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से राजीव गांधी जी यानी कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान कैसे रहा।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जिनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाई जाती है। राजीव गांधी का जीवन भारतीय राजनीति और आधुनिक भारत के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण यात्रा रहा है। वे ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री बने जागृति जी, जब भारत तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए तैयार हो रहा था।
0: जी हाँ।
1: उन्होंने विशेष रूप से युवा शक्ति, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को देश के भविष्य से जोड़ने पर जोर दिया। आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे उनके विचार और उनके विचारों में किस तरीके से अनेक योगदान की जो चीजें रही थी उनको लेकर।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि भारत के आधुनिक इतिहास में राजीव गांधी जी का नाम एक ऐसे युवा नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने देश को आधुनिक तकनीक, संचार और नई सोच की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व सरल, शांत और आधुनिक विचारों से प्रभावित था। उन्होंने ऐसे समय में देश का नेतृत्व संभाला जब भारत सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रहा था।
1: बिल्कुल
0: साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि जैसा कि अंजलि आपने बताया था कि राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता फिरोज गांधी और माता इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार राजीव गांधी जी का परिवार भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ था। राजीव गांधी जी का बचपन नई दिल्ली में बीता। वे बचपन से ही शांत स्वभाव के थे और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान तथा तकनीक में रुचि थी। उनके छोटे भाई का नाम संजय गांधी था।
1: बिल्कुल जागृति जी, राजीव गांधी का बचपन ऐसे परिवार में बीता जहां देश और समाज से जुड़े विषयों पर लगातार चर्चा होती थी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बचपन से ही उनका स्वभाव राजनीति की बजाय तकनीक और सामान्य विज्ञान की ओर अधिक था। उन्होंने भारत और विदेश में शिक्षा प्राप्त की। उन्हें मशीनों और तकनीक में विशेष रुचि थी, जिसके चलते आगे चलकर उन्होंने विमान उड़ाने का प्रशिक्षण लिया और इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में काम किया। श्रोता साथियों, यह तथ्य उनके जीवन की एक अलग तस्वीर दिखाता है। वे सीधे राजनीति में आने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका शुरुआती जीवन एक सामान्य पेशेवर व्यक्ति की तरह रहा। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद परिस्थितियां बदली और राजीव गांधी राजनीति में आए। उन्होंने लोगों के बीच जाकर काम करना शुरू किया और जागृति जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। वर्ष 1981 में वे अमेठी से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वर्ष 1984 में उनकी माता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश एक कठिन दौर से गुजरा। उसी वर्ष राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने।
0: जी हाँ।
1: उस समय उनकी उम्र केवल 40 वर्ष थी। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक बने।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। जैसा कि राजीव गांधी जी का विवाह सोनिया गांधी जी से हुआ, उनके दो बच्चे हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजीव गांधी अपने परिवार के साथ सरल जीवन बिताना पसंद करते थे। जैसा कि आपने बताया था, वे तकनीक, फोटोग्राफी और संगीत में रुचि रखते थे। राजनीति में आने की उनकी शुरुआत से इच्छा नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों के कारण हुई। उनके छोटे भाई संजय गांधी की 1980 में विमान दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी जी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। वर्ष 1981 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और अमेठी से लोकसभा चुनाव जीता, जैसा कि आपने बताया था।
1: बिल्कुल,
0: राजीव गांधी जी के जीवन में वर्ष 1984 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी माता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उस समय उनकी आयु, जैसा कि आपने बताया था, कि 40 वर्ष थी। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री में से एक बने। उनके सामने देश की एकता, शांति और विकास से जुड़ी अनेक चुनौतियां थी।
1: बिल्कुल,
0: वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, राजीव गांधी के कार्यकाल की सबसे प्रमुख पहचान भारत में तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने की सोच रही। उनका मानना था कि यदि भारत को आने वाले समय में मजबूत बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक को अपनाना ही होगा।
0: बिल्कुल,
1: कंप्यूटर और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के विस्तार पर उनके कार्यकाल में विशेष जोर दिया गया। उस समय कंप्यूटर और आधुनिक संचार तकनीक आम लोगों के जीवन में आज की तरह सामान्य नहीं थे। आज हम मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वीडियो कॉल जैसे सुविधाओं का उपयोग करते हैं। इस तकनीकी बदलाव की शुरुआती दिशा में भारत में दूर संचार और कंप्यूटर को बढ़ावा देने की नीतियों का भी योगदान रहा। कुछ पंक्तियां हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि भविष्य उसी का होता है जो समय के बदलाव को पहचान कर आगे बढ़ने की तैयारी करता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं, राजीव गांधी जी के जीवन परिचय को लेकर हमारे श्रोता साथियों को कुछ बातें बता रहे हैं, तो बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से राजीव गांधी जी जो हैं तकनीक और आधुनिक भारत की सोच रखा करते थे, यही बात करें दूर संचार के क्षेत्र में पहल की, तो श्रोता साथियों, राजीव गांधी के दौर में भारत में दूर संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुए।
1: बिल्कुल,
0: तकनीक को आम लोगों तक पहुँचाने की सोच ने आगे चलकर भारत के संचार क्षेत्र में बड़े बदलावों की नींव मजबूत की। आज गांव का व्यक्ति भी मोबाइल फोन के माध्यम से देश दुनिया से जुड़ सकता है, किसान मौसम और बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है और परिवार दूर बैठे अपने लोगों से बात कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: यह बदलाव कई दशकों की तकनीकी प्रगति का परिणाम है। लेकिन भारत के तकनीकी आधुनिकीकरण की चर्चा में राजीव गांधी के दौर में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, राजीव गांधी जी ने शिक्षा को देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना। उनके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता और समान अवसरों पर ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय की दिशा में पहल हुई। उनका मानना था कि देश का भविष्य उसके बच्चों और युवाओं से बनता है, इसीलिए शिक्षा के साथ विज्ञान, तकनीक और आधुनिक ज्ञान को जोड़ना बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, राजीव गांधी जी युवा शक्ति को देश के विकास की महत्वपूर्ण ताकत मानते थे। उनके कार्यकाल में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
0: बिल्कुल,
1: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के बाद मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदारी का अवसर देना था अंजलि।
0: बिल्कुल,
1: और ये निर्णय भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, भारत का विकास केवल बड़े शहरों के विकास से संभव नहीं है, देश की बड़ी आबादी गाँव में रहती है। राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनके समय में स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक सुधार की पहल हुई। बाद में 73वें-74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगरीय निकायों को संवैधानिक आधार मिला। आज ग्राम पंचायतें स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़क, पानी, स्वच्छता, आवास, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में पंचायतों की भूमिका अहम है।
1: बिल्कुल अंजलि, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था और प्रशासन को अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में कई प्रयास भी किए गए। उन्होंने सरकारी व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया। वे चाहते थे कि विकास का लाभ समाज के अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचे और सरकारी योजनाओं का प्रभाव जमीन तक दिखाई दे। उन्होंने प्रशासन में नई तकनीक और आधुनिक प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही श्रोता साथी, उनकी विदेश नीति को लेकर हम बात करें तो राजीव गांधी जी ने भारत की विदेश नीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका मजबूत करने का प्रयास किया।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने परमाणु निस्त्रीकरण और विश्व शांति के मुद्दों को भी महत्व दिया। वे चाहते थे कि दुनिया में हथियारों की होड़ कम हो और विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक महत्व मिले।
0: बिल्कुल जागृति जी, राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन केवल उपलब्धियों से भरा नहीं था। उनके कार्यकाल में देश ने कई गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया। उनकी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, इसलिए इतिहास में उनके कार्यकाल को समझते समय उपलब्धियों के साथ साथ उस समय की जटिल परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में उनके फैसलों पर बहस हुई और आज भी इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक उनके कार्यकाल का अलग अलग दृष्टिकोण से मूल्यांकन करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा तकनीक, शिक्षा, युवा शक्ति और आधुनिक भारत के निर्माण को लेकर कही गई जो बातें हैं वो सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनी रही है।
1: बिल्कुल अंजलि, राजीव गांधी जी मूल रूप से एक पायलट थे और राजनीति में उनकी शुरुआत परिस्थितियों के कारण हुई। राजनीति में आने के बाद भी श्रोताओं उनके व्यक्तित्व में तकनीक और आधुनिकता के प्रति आकर्षण बना रहा। वे कंप्यूटर, विमान, फोटोग्राफी और संगीत जैसी चीजों में रुचि रखते थे। उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता यह थी कि वे भारत को भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करना चाहते थे। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री पद से बाहर हो गए, लेकिन वे भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। उनकी आयु उस समय केवल 46 वर्ष थी। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। उनका जन्मदिन 20 अगस्त भारत में सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इस दिन हमें केवल उनके राजनीतिक जीवन को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि आज का युवा भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: क्या हमारे गाँव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या युवा तकनीकी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम डिजिटल सुविधाओं के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं? क्या हमारे गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं? इन सवालों पर विचार करना ही किसी महापुरुष के जीवन को याद करने का सार्थक तरीका है।
1: बिल्कुल अंजलि, राजीव गांधी जी का जीवन हमें संदेश देता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच, विज्ञान, शिक्षा और तकनीक को अपनाना बहुत जरूरी है। वैसे समय में भारत के प्रधानमंत्री बने जब देश युवा नेतृत्व और आधुनिक दिशा की तलाश में था।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, उनका राजनीतिक जीवन उपलब्धियों, चुनौती और विवादों से भरा था, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताया था। लेकिन भारत को आधुनिक तकनीकी युग की ओर ले जाने की उनकी सोच इतिहास में विशेष स्थान रखती है।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर देने, शिक्षा को आधुनिक बनाने और संचार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। राजीव गांधी जी का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है श्रोता साथियों कि परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब नई तकनीक और नई सोच का उपयोग समाज और राष्ट्र के व्यापक हित में किया जाए। उनका जीवन भारतीय लोकतंत्र और आधुनिक भारत के निर्माण की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना राजीव गांधी जी के जीवन परिचय को लेकर ढेर सारी बातों को। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में राजीव गांधी जी के जीवन परिचय को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हर रविवार को कार्यक्रम कथा कहानी को लेकर मैं हाजिर होती हूँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको शिक्षा प्रद कहानियाँ सुनाती हूँ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम इन कहानियों को सुने और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं। आज भी एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का शीर्षक है अनमोल विरासत जो पीढ़ियों को बेहतर बनाती है। जहाँ दोस्तों, जैसे हम मनुष्यों का जीवन केवल वर्तमान में जीने का नाम नहीं है, हम अपने से पहले आई पीढ़ियों से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ छोड़ कर जाते हैं। सामान्य रूप से जब हम विरासत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में घर, जमीन, धन, आभूषण या संपत्ति का विचार आता है। लेकिन क्या विरासत का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति है? निश्चित रूप से नहीं। वास्तविक विरासत उससे कहीं व्यापक और मूल्यवान है। आज हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमारे लिए मूल्यवान है। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी और उस व्यापक विरासत के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहें कार्यक्रम कथा कहानी में आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहानी का शीर्षक बताया था कि आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है अनमोल विरासत। साथियों, कहानी शुरू होती है इस तरह से कि एक छोटे से गांव की पहचान वहाँ के बड़े बड़े मकानों से नहीं बल्कि उसकी मिट्टी की खुशबू, पुराने पेड़ों की छांव और लोगों के आपसी अपनत्व से थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी विशाल शाखाएं दूर तक फैली थी और उसकी छांव में बैठकर गांव के बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। उसी गांव में गोविंद नाम के एक बुजुर्ग किसान रहते थे। उनके पास बहुत अधिक जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन गांव में उनका सम्मान बहुत था। लोग कहते थे कि गोविंद के पास धन कम है पर उसकी सोच बहुत बड़ी है। गोविंद का जीवन सादगी से भरा था। वे हमेशा कहते थे, इंसान की असली संपत्ति वो नहीं होती जिसे वो अपने पीछे छोड़ जाता है, बल्कि वो होती है जो उसके जाने के बाद भी लोगों के जीवन में रोशनी कर रही होती है। इसी तरह साथियों, समय बीतता गया, गोविंद जी बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाया। घर में मौजूद लोगों को लगा कि आज वे अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा करने वाले हैं। सब मन ही मन सोचने लगे कि किसके हिस्से में कितनी जमीन आएगी। गोविंद जी ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज अपनी संपत्ति बांटने वाला हूँ। सब एकदम से चुप हो गए। इसी बीच उन्होंने आगे कहा, हाँ, मैं अपनी विरासत बांटने वाला हूँ, लेकिन मेरी विरासत खेत, घर या पैसा नहीं है। दोस्तों, उन्होंने जैसे ही बोला तो सब हैरान हो गए। हैरानी से गोविंद जी के सामने देखने लगे। तब गोविंद जी ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें कुछ पुराने कागज, एक कपड़े की थैली और एक छोटी सी डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी निकाल कर कहा, ये मेरे पिता की डायरी है। इसमें उन्होंने लिखा था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। फिर उन्होंने कपड़े की थैली खोली, उसमें कुछ बीज थे। ये बीज मेरे दादा ने मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था, जमीन से जितना लो उससे ज्यादा लौटाने की कोशिश करना। मैंने इन बीजों से खेतों में पेड़ लगाए। आज गांव में जो छांव दिखाई देती है उसमें उनका योगदान है। परिवार के लोग एकदम ध्यान से सुन रहे थे श्रोताओं। तभी गोविंद जी बोले, और सबसे बड़ी विरासत है दूसरों के काम आना। उन्होंने अपने जीवन की कई घटनाएं सुनाई। एक बार गांव में सूखा पड़ा था। गोविंद के खेत में भी फसल बहुत कम हुई थी और फिर भी उन्होंने अपने घर का अनाज जरूरतमंद परिवारों के साथ बांट दिया था। एक बार गांव का एक गरीब बच्चा पढ़ाई छोड़ने वाला था। गोविंद जी ने उसकी किताबों की व्यवस्था की और कहा था, ज्ञान बांटने से कभी भी कम नहीं होता है। इसी तरह एक बार गांव के रास्ते में घायल व्यक्ति मिला। लोग आगे निकल गए, लेकिन गोविंद जी उसे अपने घर लाए और उसकी सहायता की। तभी गोविंद जी ने कहा कि उस दिन मैंने किसी की मदद नहीं की थी, मैंने अपने इंसान होने की जिम्मेदारी निभाई थी। इस पर परिवार के एक सदस्य बोले, लेकिन दादाजी, जमीन जायदाद का क्या? तभी गोविंद जी मुस्कुराए, जमीन भी मिलेगी और घर भी, लेकिन अगर तुम्हारे पास संस्कार नहीं होंगे तो ये सब तुम्हें खुश नहीं कर पाएंगे। तभी उन्होंने अपनी डायरी परिवार के सबसे छोटे सदस्य को देते हुए कहा, इसे पढ़ना, इसमें मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई लिखी है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ईमानदारी से कमाया हुआ विश्वास, मेहनत से बनाया हुआ चरित्र और दूसरों के लिए किया गया अच्छा काम, यही मनुष्य की सच्ची विरासत है। जैसा कि दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि उस विरासत के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो यही विरासत है कि ईमानदारी से कमाया हुआ विश्वास, मेहनत से बनाया हुआ चरित्र और दूसरों के लिए किया गया अच्छा काम, यही मनुष्य की सच्ची विरासत होती है। श्रोताओं, कुछ वर्षों बाद गोविंद जी इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार को उनका घर मिला, खेत मिले और कुछ धन भी, लेकिन उनके जाने के बाद सबसे अधिक याद उनकी संपत्ति की नहीं बल्कि उनके व्यवहार की आई। गांव के लोगों ने उनकी स्मृति में उसी पुराने बरगद के पास पौधे लगाए। जिस बच्चे की उन्होंने पढ़ाई में मदद की थी वो बड़ा होकर शिक्षक बना। उसने गाँव में बच्चों के लिए निःशुल्क अध्ययन केंद्र शुरू किया। जिस परिवार को उन्होंने सूखे के समय अनाज दिया था उनके बच्चों ने आगे चलकर गांव में पानी बचाने का अभियान शुरू किया। इसी तरह दोस्तों धीरे धीरे गोविंद जी की एक छोटी सी सीख पूरे गांव की पहचान बन गई। जो मिला है उसे केवल अपने लिए मत रखो, उसमें दूसरों का भी हिस्सा जरूर खोजो।
इसी तरह दोस्तों वर्षों बाद गांव में एक कार्यक्रम हुआ। मंच पर गोविंद जी की तस्वीर लगी थी। उनके परिवार के एक सदस्य ने कहा, हम सोचते थे कि हमारे दादाजी हमें जमीन और घर देकर गए हैं। आज समझ आया कि उन्होंने हमें उससे कहीं बड़ी संपत्ति दी थी, जीने का सही तरीका। कार्यक्रम में मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, गोविंद जी चले गए लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच में है। बरगद की छांव में बैठे बच्चों ने पूछा, कौन सी विरासत? तभी बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वह विरासत जो तिजोरी में बंद नहीं होती, वो विरासत जो व्यवहार में दिखाई देती है, और वो विरासत जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। और फिर उन्होंने बच्चों से कहा, तुम्हें भी अपने जीवन में ऐसी ही विरासत बनानी है। तभी बच्चों ने पूछा, हम क्या छोड़कर जाएं? तभी बुजुर्ग ने कहा, इतना अच्छा काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी चीजों को नहीं, तुम्हारी अच्छाइयों को याद करें। उस दिन बच्चों ने बरगद के नीचे एक संकल्प लिया श्रोताओं, कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे, ईमानदारी से जीवन जिएंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, ज्ञान बांटेंगे और अपने गांव को बेहतर बनाने में अपना योगदान जरूर देंगे। इसी तरह समय आगे बढ़ता गया, बरगद की शाखाएं और फैलती गई, नई पीढ़ियां आती रही, पुरानी पीढ़ियां जाती रहे, लेकिन गोविंद जी की सीख पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और यही थी उनकी अनमोल विरासत। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों कि विरासत केवल वो नहीं है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, विरासत तो वो भी है जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ते हैं। हम अपने बच्चों को घर दे सकते हैं लेकिन उससे बड़ी बात है उन्हें अच्छे संस्कार देना। हम उन्हें पैसा दे सकते हैं लेकिन उससे भी बड़ी बात है उन्हें मेहनत और ईमानदारी का मूल्य समझाना। हम उन्हें जमीन दे सकते हैं लेकिन उससे भी बड़ी बात है उन्हें प्रकृति की रक्षा करना सिखाना। हम उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं लेकिन उससे भी बड़ी बात है उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना। सच्ची विरासत वही है जो हमारे बाद भी किसी के जीवन को बेहतर बनाए। तो दोस्तों ये थी कहानी और इस कहानी से हमें शिक्षा भी बहुत अच्छी मिलती है। और कहानी का शीर्षक था, अनमोल विरासत जो पीढ़ियों को बेहतर बनाती है। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है जो मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको गीत से पहले बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी अनमोल विरासत को लेकर, और शुरुआत में मैंने आपको कहा भी था कि हमारी असली विरासत क्या हो सकती है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भौतिक संपत्ति तो हमारी असली विरासत हो ही नहीं सकती, वास्तविक विरासत तो उससे कहीं व्यापक और मूल्यवान है। संस्कार, विचार, ज्ञान, परंपराएं, ईमानदारी, मेहनत, प्रकृति के प्रति प्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता की भावना, ये ऐसी विरासत है श्रोता साथियों जिनका मूल्य किसी धन संपत्ति से कहीं ज्यादा अधिक होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य की सबसे अनमोल विरासत वो है जो उसके बाद भी समाज और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करती हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे श्रोताओं कि किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी उसके संस्कार होते हैं। धन कम या ज्यादा हो सकता है, संपत्ति बढ़ या घट सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। आज की तेज गति वाली दुनिया में सफलता की इच्छा हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन श्रोताओं सफलता का रास्ता कैसा हो ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को उसके परिवार से ईमानदारी की सीख मिली है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी गलत रास्ते को चुनने से पहले कई बार सोचेगा। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति सच्चा होना नहीं है, ये स्वयं के प्रति भी ईमानदार रहने का नाम है। इसी के साथ हमारे पूर्वजों का जीवन आज की तुलना में बहुत कठिन रहा है। सीमित संसाधन थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत की, धैर्य रखा और संघर्ष से अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाया। उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं बल्कि हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। धन बांटने से कम हो सकता है लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देता है तो वो केवल एक बच्चे का भविष्य नहीं बदलता दोस्तों, बल्कि वो आने वाले समय को प्रभावित करता है। इसी तरह प्रकृति की बात करें तो हमारे पूर्वजों ने हमें केवल जमीन और घर नहीं दिए, उन्होंने हमें नदियाँ दी हैं, जंगल दिए, पहाड़ दिए, खेत, तालाब, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन भी दिए, लेकिन ये विरासत हमारी निजी संपत्ति नहीं है, प्रकृति आने वाली पीढ़ियों की भी है। अगर हम आज पानी को व्यर्थ बहाएंगे, जंगलों को नुकसान पहुँचाएंगे, पर्यावरण के प्रति लापरवाह रहेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों के हिस्से को कम कर देंगे। इसीलिए प्रकृति की रक्षा करना भी विरासत को सुरक्षित रखना है। साथ ही श्रोता साथियों आपसे कहना चाहूंगी कि विरासत प्राप्त करना जितना सुखद है उसे संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने पूर्वजों से कोई अच्छी परंपरा मिली है तो उसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी असली पहचान इस बात से नहीं बनेगी श्रोताओं कि हमने जीवन में कितना पाया, बल्कि इस बात से बनेगी कि हमने अपने बाद दुनिया के लिए कितना अच्छा छोड़ा। इसलिए आज से आप एक छोटी सी शुरुआत करें, एक अच्छा संस्कार दें, एक पेड़ बचाएं, एक व्यक्ति की मदद करें, एक ज्ञान की बात आगे पहुंचाएं, एक गलत काम से स्वयं को रोकें, क्योंकि यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर आने वाली पीढ़ियों की बड़ी विरासत बनेगी। तो आइए श्रोता साथियों ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व कर सकें।

धन समाप्त तो हो सकता है, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, इमारतें पुरानी हो सकती है, नाम भी समय के साथ धुंधला पड़ जाएगा, लेकिन अच्छे कर्मों की खुशबू पीढ़ियों तक बनी रहती है और यही है हमारी सबसे अनमोल विरासत। तो दोस्तों, ये थी कहानी और इससे जुड़ी छोटी मोटी बातें। ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी, इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। पर जाने से पहले आपको पता बताना चाहूंगी, ताकि आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार, साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। लेकर आ गई हूं बच्चों कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की मैं जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो कि आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो आज भी बच्चों कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही कहानी जिसमें एक कूड़े का डब्बा भी बात करता है, नाराज होता है और आखिर में बच्चों को एक जरूरी बात सिखाता है। बच्चों आपने कूड़ेदान तो बहुत देखे होंगे, कोई हरे रंग का, कोई नीले रंग का, तो कोई लोहे का, तो कोई प्लास्टिक का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कूड़ेदान बोल पाता तो वह हमसे क्या कहता? तो बच्चों कार्यक्रम के माध्यम से इस प्यारी से कहानी को मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

बच्चों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। जैसा कि गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं कूड़े का डब्बा रो पड़ा। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से सुंदर गांव में चिंटू नाम का एक बच्चा रहता था। चिंटू बहुत ही चंचल और हसमुख था। उसे खेलना, दोस्तों के साथ घूमना और तरह तरह की चीजें खाना बहुत पसंद था। लेकिन चिंटू की एक आदत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वह जहाँ भी जाता वहीं उसका कचरा छोड़ देता था। चिप्स का पैकेट हो तो सड़क पर, टॉफी का रेपर हो तो मैदान में, पानी की बोतल हो तो स्कूल के पीछे, और अगर कोई उसे समझाता तो वह हंस कर कहता, अरे एक छोटे से कागज के टुकड़े से क्या फर्क पड़ेगा। चिंटू की माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटा कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। चिंटू कहता, हाँ माँ डाल दूंगा। लेकिन बच्चों अगले दिन फिर से वह वही करता। एक दिन चिंटू स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक टॉफी खरीदी, टॉफी खाई और उसका चमकदार रेफर सड़क पर फेंक दिया। वहीं पास में एक बड़ा सा कूड़ेदान रखा था। कूड़ेदान ने चिंटू को देखा, वह चुप रहा। चिंटू आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, चिंटू रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क पर कोई नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ा। फिर आवाज आई, बच्चू चिंटू मुझे देखो। चिंटू डर गया, उसने इधर उधर देखा। आखिर उसकी नजर उसे कूड़ेदान पर पड़ी। चिंटू ने हैरानी से पूछा, अरे तुमने मुझे बुलाया। कूड़ेदान बोला, हाँ चिंटू मैंने ही तुम्हें बुलाया। चिंटू की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन तुम तो कूड़ेदान हो, तुम बोल कैसे सकते हो। कूड़ेदान ने लंबी सांस ली और कहा, आज मेरा मन बहुत दुखी है, इसीलिए शायद मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। चिंटू ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो। कूड़ेदान बोला, क्योंकि मैं यहाँ लोगों की मदद करने के लिए रखा गया हूँ, लेकिन लोग मेरे पास आकर भी कचरा अंदर नहीं डालते। क्योंकि मैं यहाँ लोगों की मदद के लिए रखा गया हूँ, लेकिन लोग मेरे पास आकर भी मेरे अंदर कचरा नहीं डालते। चिंटू चुप हो गया। कूड़ेदान ने कहा, देखो तुम्हारे हाथ में जो टॉफी का रेफर था उसे तुमने सड़क पर फेंक दिया। चिंटू ने नीचे देखा, रेफर सचमुच सड़क पर पड़ा था। कूड़ेदान बोला, मैं तुम्हारे पास ही तो खड़ा था, तुम मेरे अंदर डाल सकते थे। चिंटू ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। कूड़ेदान बोला, गलती हो जाना बुरी बात नहीं, लेकिन गलती समझ आने के बाद उसे दोहराना अच्छी बात नहीं है। चिंटू ने तुरंत रेपर उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। कूड़ेदान मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद चिंटू। चिंटू ने पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। कूड़ेदान हंसते हुए बोला, नहीं मैं तो रोज लोगों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती। चिंटू ने पूछा, फिर मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कूड़ेदान बोला, क्योंकि शायद आज तुम्हें अपनी गलती समझने की जरूरत थी। चिंटू सोच में पड़ गया। अगले दिन वह स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि मैदान में बहुत सारे कागज और प्लास्टिक के पैकेज पड़े हुए हैं। कुछ बच्चे टिफिन खाने के बाद रेपर वहीं छोड़ दे रहे थे। चिंटू ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों कचरा जमीन पर मत फेंको, कूड़ेदान में डालो। एक दोस्त हंसकर बोला, तुम कब से इतने समझदार हो गए। चिंटू बोला, कल मुझे कूड़ेदान ने समझाया है। सभी बच्चे हंसने लगे। एक बच्चे ने कहा, कूड़ेदान भी बोलता है। चिंटू मुस्कुराया और बोला, अगर हम उसकी बात सुनना चाहें तो वह जरूर बोलता है। बच्चों ने उसकी बात मजाक में टाल दी। लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल में एक समस्या खड़ी हो गई। बारिश हुई, स्कूल के पास नाली में प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और कागज जमा हो गए थे। पानी का रास्ता बंद हो गया था। स्कूल के बाहर पानी जमा होने लगा, बच्चों को आने जाने में परेशानी होने लगी। शिक्षक ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों यह परेशानी सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हुई है, हमने जगह जगह कचरा फेंका जिसके कारण पानी का रास्ता बंद हो गया। चिंटू को तुरंत कूड़ेदान की बात याद आ गई। बच्चों उसने अपने दोस्तों से कहा, देखा अगर हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकते तो यह समस्या नहीं होती। इस बार उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मानी। सभी बच्चों ने मिलकर स्कूल के आसपास का कचरा उठाया। किसी ने कागज उठाए, किसी ने प्लास्टिक की बोतल उठाई, किसी ने सूखे पत्ते एक जगह पर जमा किए,
फिर सबने कचरा सही जगह पर डाला। शिक्षक ने बच्चों की तारीफ की और कहा, बहुत अच्छा, याद रखो साफ सफाई सिर्फ सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है। चिंटू ने कहा, सर अब हम अपने स्कूल को साफ रखेंगे। शिक्षक ने मुस्कुरा कर कहा, और सिर्फ स्कूल को ही नहीं, अपने घर, गली और पूरे गांव को। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हम अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो श्रोता साथियों, हमने देखा कि कहानी में एक और बदलाव आया। अब चिंटू ने एक नई आदत बना ली थी, वह जब भी किसी बच्चे को कचरा जमीन पर फेंकते हुए देखता तो उसे प्यार से समझाता, भैया कचरा कूड़ेदान में डालिए। कभी कभी कोई उसकी बात मान लेता और कभी कोई नहीं मानता था, लेकिन चिंटू ने समझाना बंद नहीं किया। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल में स्वच्छता टोली बनाई। हर दिन बच्चे स्कूल के आसपास देखते कि कहीं कचरा तो नहीं पड़ा। उन्होंने अपने स्कूल का एक सुंदर सा पोस्टर भी बनाया, कचरा जहाँ तहाँ नहीं कूड़ेदान में जाएगा। दूसरा पोस्टर था, मेरा घर, मेरी गली, मेरा स्कूल, सब साफ और सुंदर। धीरे धीरे स्कूल बदलने लगा। जो बच्चे पहले चॉकलेट के रेपर जमीन पर फेंक देते थे, अब उसे कूड़ेदान में डालने लगे। जो बच्चे बोतल मैदान में छोड़ देते थे, वे उसी जगह रखने लगे। शिक्षक भी बहुत खुश थे। एक शाम चिंटू उसी पुराने कूड़ेदान के पास गया। उसने देखा कि कूड़ेदान साफ था और उसके आसपास भी कचरा नहीं था। चिंटू ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो तुम खुश हो ना? कूड़ेदान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत खुश हो ना? चिंटू ने पूछा, क्यों? कूड़ेदान बोला, क्योंकि अब लोग सिर्फ मुझे देखते नहीं हैं, मेरी जरूरत को भी समझते हैं। चिंटू हंसकर बोला, और अब तुम रोते नहीं हो? कूड़ेदान बोला, नहीं अब मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। चिंटू ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी कचरा सड़क पर नहीं फेंकूंगा। कूड़ेदान बोला, और सिर्फ खुद नहीं दूसरों को भी प्यार से समझाना। चिंटू ने सर हिलाया, पक्का वादा। उसी दिन से चिंटू और उसके दोस्तों ने अपने गांव में स्वच्छता का एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों से

कहा, साफ गांव स्वस्थ गांव। और देखते ही देखते बच्चों उसका छोटा सा प्रयास पूरे गांव में बदलाव लाने लगा। अब गांव की गलियां पहले से ज्यादा साफ दिखाई देती थी। बच्चे भी खुश थे, बड़े भी खुश थे और वह पुराना कूड़ेदान भी। वह अब बिल्कुल भी नहीं रोता था क्योंकि आखिरकार लोगों ने बात समझ ली थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत ही जरूरी बातें सीखने को मिलती है। पहली बात तो बच्चों यह कि कचरा हमें हमेशा सही जगह पर डालना चाहिए। अगर हमारे आसपास कचरा रहेगा तो वातावरण गंदा होगा और कई सारी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। दूसरी सीख बच्चों है कि सफाई किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा घर हो, स्कूल हो, सड़क हो या पार्क हो, उसे साफ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तीसरी सीख बच्चों हमें यह मिलती है कि छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। चिंटू अकेला था लेकिन उसने शुरुआत खुद से की, फिर उसके दोस्त जुड़े और धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। और बच्चों, सबसे जरूरी बात, जब भी आपके साथ कोई कागज, टॉफी का रेपर या कोई दूसरा कचरा हो तो उसे सड़क पर मत फेंकिए। कूड़ेदान थोड़ा दूर हो तो कुछ कदम चलकर वहां तक जाइए, क्योंकि याद रखिए बच्चों, स्वच्छता की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे ही होती है। तो बच्चों, आज हमें एक छोटा सा संकल्प लेना है कि मैं कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा, मैं अपने घर स्कूल को साफ रखूंगा, मैं दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्यार से समझाऊंगा और अपने आसपास को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान दूंगा। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में कूड़े का डब्बा रो पड़ा था, लेकिन हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारे आसपास की गंदगी देखकर हमारी धरती कभी न रोए। आशा करती हूँ कि बच्चों, ये प्यारी सी कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक प्यारी सी कहानी और सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलो।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। और जैसा कि बच्चों गीत से पहले ही हमने बहुत ही प्यारी कहानी सुनी थी, अब यही एक और प्यारे से कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तिरंगे की छोटी सी पतंग। तो चलिए बच्चों सुनते हैं कहानी को। एक छोटे से गाँव में मोहन नाम का एक बच्चा रहता था। मोहन को पतंग उड़ाना बच्चों बहुत पसंद था। 15 अगस्त भी आने वाला था। गाँव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ तिरंगे झंडे लगे थे और बच्चे देशभक्ति के गीतों की तैयारी कर रहे थे। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ इस बार मैं भी एक बहुत ही सुंदर पतंग बनाऊंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, लेकिन ऐसी पतंग बनाना जो सबसे अलग हो। मोहन ने कागज लिया और अपने पतंग पर तिरंगे के 3 रंग बनाए, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में उसने नीले रंग का एक छोटा सा चक्र भी बनाया। पतंग तैयार हुई तो मोहन उसे देखकर मैदान में पहुंचा। उसका दोस्त सोनू बोला, मोहन तुम्हारी पतंग तो बहुत सुंदर है। मोहन मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ पतंग नहीं है सोनू, यह हमारे देश के सम्मान की पतंग है। दोनों ही पतंग उड़ाने लगे। कुछ देर बाद हवा चली और मोहन की पतंग बहुत ऊंची उड़ने लगी। मोहन खुशी से बोला, देखो मेरी पतंग आसमान में कितनी ऊंची पहुंच गई। तभी उसकी पतंग की डोर एक पेड़ की शाखा से उलझ गई। मोहन घबरा गया, उसने डोर खींची और पतंग उलझ गई। तभी सोनू ने कहा, जोर मत लगाओ मोहन, कहीं पतंग फट न जाए। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे डोर सुलझाई और आखिरकार पतंग फिर से आसमान में उड़ने लगी। मोहन ने आसपास की ओर देखते हुए कहा, सोनू आज मुझे एक बात समझ आई। सोनू ने कहा, क्या मोहन? मोहन बोला, देश भी इसी पतंग की तरह है। इसी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम सभी को मिलकर इसकी डोर संभालनी पड़ेगी। सोनू मुस्कुराया और बोला, अगर हम डोर छोड़ दे तो? मोहन बोला, तो पतंग ही वो भटक सकती है। दोनों दोस्त कुछ देर तक तिरंगे वाली पतंग को देखते रहे। फिर मोहन ने कहा, हम अपने देश के लिए बड़े बड़े काम अभी से नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी अच्छी बातें तो कर सकते हैं। सोनू ने पूछा। जैसे मोहन ने गिनना शुरू किया, अपने स्कूल को साफ रखना, पेड़ लगाना, बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की मदद करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना और अपने देश का सम्मान करना। सोनू ने कहा, तो आज से हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। दोनों दोस्त ने हाथ मिलाया। आसमान में तिरंगे रंगों वाली पतंग लहरा रही थी और नीचे 2 बच्चे अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प ले रहे थे। तो बच्चों, इस प्यारी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, देश से प्यार सिर्फ झंडा लहराना या देशभक्ति गीत गाने से नहीं होता। देश प्रेम हमारे छोटे छोटे अच्छी आदतों में भी दिखाई देता है। जब हम ईमानदारी से पढ़ते हैं, स्वच्छता रखते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने देश का सम्मान करते हैं, तब हम अपने देश को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखिए, देश बड़ा काम करने से नहीं, छोटे छोटे अच्छी जिम्मेदारियां निभाने से महान बनता है। तो बच्चों, इस प्यारी सी कहानी के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की से मैं विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

तो बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में मैंने आपको जो प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाई और जो गीत संगीत सुनाए प्यारे प्यारे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी को। इसी अनुमति के साथ बाय बाय बच्चों।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब अनिमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनिमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, नारी जब अपने सपनों को पहचान लेती है तो हर मुश्किल को आसान कर देती है, खुद सशक्त बनकर दूसरी महिलाओं को भी नई उड़ान देती है। जी हाँ, एक महिला का साहस कई जीवन बदल सकता है। एक महिला की जागरूकता पूरे समाज को संभाल सकती है। जो खुद आगे बढ़ती है वह औरों के लिए भी रास्ते खुलती है। जी हाँ दोस्तों, हौसलों के लो जलाकर चल पड़ी है वो, हर बाधा को पार कर आगे बढ़ी है वो। आज अपनी प्रेरणा से कई महिलाओं के सपनों को नई दिशा दे रही है वो।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्र रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, जैसा कि हमारी जो शुरुआती चंद पंक्तियां रही उसी से आप समझ गए होंगे कि आज कार्यक्रम हमारे मेहमान में जो शख्सियत जुड़ने जा रही है, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष से सफलता का रास्ता तय किया और अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा और जागरूकता की मिसाल की ओर ले जा रही हैं। तो आज कार्यक्रम में ऐसे ही समुदाय की एक महिला जुड़ने जा रही हैं, जिन्होंने अपने जीवन को तो बदला ही, साथ ही दूसरी महिलाओं के जीवन को भी बदलने की निरंतर कोशिश कर रही हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई ढेर सारी बातों को। नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वाग्र रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम मीरा बरगोट, ग्राम पंचायत रोंजिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राज्य राजस्थान।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आप घाटोल की निवासी हैं, तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो कैसे बीता।
1: हमारा बचपन तो अच्छा भी रहा और कठिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। बचपन तो हम पहली से लगाकर पांचवी तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़े। तो हम जब राजीव गांधी स्कूल खुली तो हम खुद गए स्कूल पढ़ने के लिए, हमको पढ़ना है। पहले तो क्या इतने माता पिता वो इच्छुक थे कि इनको पढ़ाएं, पढ़ना भी जरूरी नहीं थे, फिर भी हम स्कूल खुली पाठशाला तो उसमें पढ़ने के लिए गए। आठवीं तक स्कूल थी गांव में, तो दसवीं तक भी स्कूल नहीं थी, आठवीं तक ही थी। तो वहाँ से पढ़ाई शुरू कर हम सातवीं क्लास में पढ़े, वहाँ से आठवीं क्लास में हम गढ़ी हॉस्टल में गए।
0: बिल्कुल।
1: वहाँ नाइन्थ क्लास वहाँ तबियत बीमार होगी, इसकी वजह से वहाँ से हम फेल होकर वापस हमारे गांव में पढ़ेगी। दसवीं तक स्कूल थे दूसरी स्कूल में गांव से दूर। के बाद हमारा तो बहुत कठिन समय में हम पढ़ेगी कॉलेज तक की हमने तो।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कॉलेज तक शिक्षा प्राप्त की है और आपका जो जीवन है वो बहुत कठिन भी रहा और सरल भी रहा, कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें उसमें मिक्स थी। तो आपने इन सारी चीज़ों को कैसे दूर किया? कभी पढ़ाई में किसी चीज़ का अभाव लगा तो क्या किया, कैसे मेहनत की, माता पिता का सहयोग आपको कैसे मिला?
1: कभी कभी तो उनकी स्थिति जानते हुए हमने थोड़ा कठिन परिश्रम का सामना भी किया। कभी कभी कितनी बातों की आने जाने की समय, पढ़ाई में आने जाने की समस्या रहती, पैसों की भी समस्या रहती, सब समस्या जूझते हुए हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ने की कोशिश की हम।
0: बिल्कुल। तो उसके बाद का समय आपका कैसा रहा? जैसा कि आप शादीशुदा है मैं आपको देख पा रही हूँ, तो उसके बाद आपको आपके ससुराल से क्या सपोर्ट मिला? अभी के समय में आप क्या कर रही हैं अपने जीवन में?
1: हमने दारी पास होके हमने शादी कर ली। दारी के बाद हमने कॉलेज यहाँ ससुराल से की मैंने।
0: बिल्कुल।
1: तो कॉलेज के बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी,
0: फिर
1: घर गृहस्थी में
0: जुड़ गए। हाँ। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने ससुराल आकर कॉलेज किया, तो आपके ससुराल वालों का कैसे आपको सपोर्ट मिला, किस तरीके से उन्होंने आपको मदद की?
1: पहले तो मना बोल रहे थे घर गृहस्थी में है तो कर हो सके तो करो, पर फिर हमने हमने बोला कि हमको करना ही है, पढ़ना ही है हमको, कॉलेज तक कर, कॉलेज करे या बीएड करे, एसटीसी करे, कुछ भी करे, इसके बाद तो पर अभी हमको यहाँ तक तो ले जाइयो, तो इसकी कॉलेज कर ली, इसके बाद फिर आगे पढ़ाई नहीं कर सके।
0: बिल्कुल। तो अभी के समय में आप क्या कर रही हैं अपने जीवन में?
1: पारिवारिक में आ गए, इसके बाद हम धीरे धीरे वो हमने घर पर सिलाई मशीन का काम शुरू किया। बेरोजगार बेटा तो क्या करे, कुछ तो करे यूँ करके।
0: बिल्कुल।
1: हमारी एक संस्था आई थी वनवासी कल्याण करके, तो उसमें यहाँ के जागरूक लोग थे, तो उन्होंने बोला कि ये महिला ये कर सकती है यूँ, तो उनको मेरे पास भेजा। तो उन्होंने फिर मेरे पति ने कहा क्या ऐसे क्या है, तो मेरे को बोला कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ यूँ, तो उसमें मैं जुड़ गई। तो उसमें क्या मासिक मानदेय था महीने का 1000 रुपये, महीने का सिर्फ, दो कंडे बच्चे को पढ़ाना यूँ, संस्कार देना बच्चे को यूँ, तो फिर इसमें जुड़ गई मैं। जुड़ने के बाद काफ़ी अनुभव किया मैंने, बाहर ट्रेनिंग के लिए गई, तो बाहर की दुनिया कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, जाने से क्या है। इसके बाद फिर कोरोना आ गया तो वो बंद हो गई, इसके बाद कोरोना के पहले यहाँ वागदरा संस्था में जुड़ गई मैं। तो वहाँ से जुड़ कर मैंने पहले तो सक्षम समय में जुड़ी, वहाँ पर हर मीटिंग में जाना मेरे को अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी सबकी। फिर मैंने सोचा कि ये तो सब अपने शिक्षा के बारे में ही, योजना के बारे में ही, खेती बाड़ी के बारे में सब नहीं बातें ये, तो फिर मैंने इसको कभी यूँ नहीं सोचा कि कैसा भी समय निकाल कर हर मीटिंग में मैं भाग ले लेती हूँ।
0: बिल्कुल। तो अभी आपके जीवन में क्या परिवर्तन?
1: इसके बाद मेरे जीवन में इस समूह से जुड़ने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया मैंने, तो फिर सिलाई का काम शुरू कर दिया था। वो करते हुए भी मैंने इच्छा जुड़ी रही, सब करते हुए घर का काम करती, फिर वो सिलाई वाला भी करती, पारिवारिक जीवन में कहीं भी आना जाना वो भी करती। इसके बाद फिर इच्छा जुड़कर मुझे काफी अनुभव मिला कि मुझे खुद को पता नहीं था कि सरकारी योजना कितने प्रकार की है और इनका कितने लोगों को क्या फायदा मिल रहा, हमको क्या फायदा मिल रहा। तो फिर मैंने जुड़ के ये मुझको काफी अनुभव हुआ, क्यों नहीं इसके माध्यम से मैं भी किसी को सहयोग कर सकती हूँ,
2: बिल्कुल,
1: और मैं भी खुद बदल सकती हूँ दूसरों को भी। तो फिर मैंने खुद को यहाँ पर घर पर पोषण वाड़ी लगाई, पेड़ पौधे लगाए, यहाँ से जुड़ गई, सब जब से वागदरा में जुड़ी तभी मेरा बगीचा पूरा ही हुआ।
2: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने ये पोषण वाड़ी लगाई है और आपने बहुत सारी चीजें करी हैं, और क्या परिवर्तन आया और क्या क्या चीजें आपने जीवन में सीखी हैं और अभी आप किस पद पर हैं?
1: देखो मैं जैसे जुड़ी तब से मुझे छोटे छोटे हमारे महिला समूह में सक्षम संबंध था, उसमें भी मुझे अध्यक्ष के साथ एक रूप भी रखा।
2: बिल्कुल,
1: इसके बाद धीरे धीरे मुझे संगठन मिले गए। इसके बाद हम पहले क्या चवराज मित्र के रूप में हमें लगाया गया था, सीआरपी बोलते थे, तो एक जिम्मेदारी थी किसी गांव की।
2: बिल्कुल,
1: तो उसमें एक मंथली, तो फिर मैंने वो भी किया, 3 साल तक वो किया। फिर उसमें क्या किया कि एक अस्थाई के रूप में दूसरे लगाना था, जो महीने में तो कहीं भी घूम के 6 गांव में तो एक दिन में भी मीटिंग कर सकते हैं अपन।
2: बिल्कुल,
1: तो फिर हमेशा फिर मैंने वो छोड़ दिया कि मैं महीना रेगुलर में नहीं जा सकती, जो एक गांव में तो दो एक दिन में 2-3 गांव भी कवर कर सकती थी, पर वो पूरा महीना जाना पड़ता, इसके लिए मैंने घर गृहस्थी घर का काम की वजह से मैंने वो नहीं किया, जो फिर छोड़ दिया। इसके बाद हमारा संगठन बना, तो उसमें मैं जुड़ी, संगठन में सदस्य बन गई। संगठन सदस्य में हर मासिक बैठक में जाती है और यहाँ की समीक्षा सुनती, तो उसमें मुझे चाची पद दे संगठन में, तो हमारी गांव की समीक्षा को लेकर मैं ब्लॉक लेवल तक हम सब सदस्य मिलकर जाते, जिला लेवल तक जाते, राज्य लेवल तक, ऐसी समीक्षा हो बड़ी से बड़ी समीक्षा फिर संगठन के सदस्य मिलकर। तो मैं संगठन में तो मुझे अध्यक्ष का पद है, इसके बाद मुझे जिला मंच की सदस्य बनाई, उसके बाद राज्य मंच महिला
2: के भी सदस्य बना दिया। बिल्कुल, तो आपको ये सारे अनुभव जो मिले हैं उसको मिलने के बाद आपके मन में क्या खुशी है, आप अपने आप में क्या महसूस करती है और आपके परिवार का सपोर्ट आपको कैसे मिला?
1: इससे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि देखो मेरे पास यूं नहीं सोचती है कि नौकरी है तभी ये सब कर रही हूँ, नौकरी वालों से भी मेरे पास बड़ा पद है।
2: बिल्कुल,
1: मैं जरूरी थोड़ा नौकरी करो तभी पद मिलते है, और किसी के पास अच्छी सैलरी उसके पास ही पद होना चाहिए वो नहीं सोचती मैं यूँ, मेरे पास यूँ हो रहा मुझे कि बहुत बड़ा पद है, पद के माध्यम से मैं सब लोगों से संपर्क कर सकती, किसी के पास जाना हो तो भी मुझे जाने की अनुमति मिलती है। मैं अपने आप को यूँ महसूस नहीं कर सकती कि मैं खुद ऐसे ये नहीं कर सकती हूँ कि वो मुझे डर नहीं है किसी
2: के। आपके घर परिवार में कौन कौन है और वो आपको कैसे मदद करते हैं इन सारी चीजों में?
1: पहले तो नहीं समझते थे, पर उनको लगा कि मेरा नाम न्यूज में आता है, कहीं भी जाती हूँ तो हर कोई भी सम्मानता पूर्वक मुझे देखते, तो उनको भी वास्तविक है कुछ ऐसा काम कर रही, तब जाकर इनको ये पद मिला और ये करते, तो फिर वो भी समझ गए कि इसको कहीं भी जाने की जरूरत है, और ये मैंने ऐसा काम भी कराया गाँव में, चलो इसके माध्यम से ये काम हुआ तो मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते कि ये भी कोई समाज के लिए काम कर रही, गांव के लिए काम कर रही है, सबके हित का काम कर रही है, तो फिर मुझे मनाने बोलते सपोर्ट करते सभी।
2: बिल्कुल, तो आप जो दूसरी महिलाएं हैं जो आपको सुन रही हैं और आपने अपनी शुरुआत जो करी है, आप भी कठिन समय से ही गुजरी हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सी बार वो महिलाएं इन सारी चीजों को लेकर सोचती हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती और वो हार मान लेती हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं तो हर महिलाओं को यूं ही कहती हूं कि हर काम असंभव कोई नहीं है, कोई भी काम करने से हल होता है, यूं नहीं कि अब नहीं कर रही हो तो कोई ऐसा अपने जीवन में कोई ऐसा काम तो है ही नहीं अपन नहीं कर सकते यूं।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए मैं हर बार कहीं भी महिलाओं के बारे में बात करती हूँ मेरा खुद का परिचय देती हूँ, मैं यहाँ से मैं ऐसे इससे हम भी गुजरे तब जाकर ये ऐसा हुआ, अपने आप तो कुछ होने वाला है नहीं, कुछ भी करेंगे तभी होगा ये।
2: बिल्कुल, और समाज में आपको कौन से ऐसे सबसे बड़ी समस्या लगती है जिसे अभी भी बदलने की जरूरत है महिलाओं को लेकर?
1: महिलाओं को लेकर तो बहुत सारी समस्या है, महिलाओं को लेकर तो क्या है कि हमारे गांव की मेन समस्या तो ये है कि गांव में रोजगार का अभाव है, तो महिला रोजगार के लिए बाहर नहीं जा सकती है।
2: बिल्कुल,
1: तो कोई ऐसा हो तो गांव स्तर पर महिलाओं के लिए कुछ स्थानीय रोजगार मिले, तो उनका शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार भी मिल जाए, आर्थिक स्थिति भी कमजोर नहीं है उसकी आर्थिक सहायता भी मिल सकती।
2: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप कार्यक्रम से जुड़ी और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: साथियों, जैसा कि अभी कार्यक्रम के माध्यम से मीरा जी जुड़ी हुई थी और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से जीवन में परेशानियां तो आती ही हैं, लेकिन मन में अगर कुछ करने की चाह है और मैं कर सकती हूँ का जुनून है तो कोई भी महिला अपने जीवन को बदल सकती है। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके जीवन की बातें आपको अवश्य

ला लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
5: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किमकी घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितली शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
0: साथियों, सत्य की राह पर चलते जाएं, अहिंसा का संदेश फैलाएं, गांधी जी के सपनों का भारत बनाएं। जी हाँ, सादा जीवन, ऊंचे विचार, सत्य अहिंसा बने हमारा आधार, यही है गांधी जी का सच्चा उपहार।

की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि दोस्तों पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हम जान रहे थे गांधी जी के उपवास प्रकरण के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: और अंजलि जी, वो प्रकरण हमारा पूरा हो चुका था। अब यही कार्यक्रम के माध्यम से आज हम एक नए प्रकरण को लेकर बातचीत करेंगे। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सबके गांधी नारी प्रकरण के बारे में।
1: जी हाँ।
0: अगर इस प्रकरण की शुरुआत करें तो साथियों, 1930 में जब गांधी जी ने साबरमती से दांडी जाकर वहाँ नमक बनाकर नमक कानून की सविनय अवज्ञा करने का निर्णय किया था, तब उनके साथ कुछ करने वाले कौन कौन लोग होंगे, इसकी सूची भी उन्होंने ही तैयार की थी। उस सूची में चयनित नाम आश्रम वासियों के ही थे। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: वे स्वयं अपने चयनित साथियों के साथ कानून भंग करे और इसके उपरांत ही पूरे देश के लिए कानून भंग की छूट दी जाती थी। गांधी जी द्वारा बनाई गई कुछ करने वाली सैनिकों की सूची में एक भी महिला का नाम नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: आश्रम की बहनों में इसे लेकर खलबली मच गई। दूसरी कई महिलाओं के साथ इस लेखक की माँ भी गांधी जी के साथ तकरार करने के लिए गई हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: बापू, आपको आश्रम में से एक भी महिला आपके साथ कुछ लायक नहीं लगी क्या? गांधी जी सुनकर थोड़े मुस्कुराए और फिर हंसे। तुमने ये सवाल न पूछा होता तो मुझे आश्चर्य होता।
1: जी जी,
0: मैं जानता ही था कि तुम पूछोगे, पर मैंने तो जानबूझकर तुम्हें कुछ करने वालों से अलग रखा है। यह कहकर गांधी जी ने आश्रम की महिलाओं की आकुलाहट बढ़ा दी। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: फिर गांधी जी ने फौरन ही उसका शमन भी कर दिया।
1: बिल्कुल कशिश, साबरमती से दांडी तक की कूच में गांधी जी ने अपने साथ एक भी महिला सत्याग्रही न रखने के दो कारण बताए। पहले कारण के विषय में तो बाद में नवजीवन के अंक में भी उन्होंने लिखा था। उन्होंने बताया कि आखिर अपनी लड़ाई अंग्रेज सरकार के खिलाफ है। अंग्रेजों का दावा ऐसा है कि वे स्त्री दक्षिणियों में मानते हैं। हमारे कूच में यदि महिलाएं भी साथ जुड़ी हो तो स्वाभाविक रीति से हम उनको कूच में अग्रिम पंक्ति में रखेंगे। अंग्रेज सरकार कदाचित ऐसा कह सकती है कि कूच में आगे महिलाएं थी, इसलिए हमने अपने स्त्री दाक्षिण्य के कारण उन पर हाथ नहीं उठाया। सरकार को ऐसा कहने का मौका ही न मिले, इसलिए मैंने बहनों को इस कूच से बाहर रखा। सरकार को चाहे जितना हाथ उठाना हो, भले ही हमारे सत्याग्रहों पर उठाए। तकरार करने गई आश्रम की बहनों को इस उत्तर से भी अधिक संतुष्टि गांधी जी के दूसरे उत्तर से मिली। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा ऐसा माना है कि अहिंसक लड़ाई में पुरुषों की बजाय महिलाओं का योगदान होगा।
0: बिल्कुल।
1: इसमें सहन शक्ति अधिक होती है, ये अहिंसक पराक्रम भी अधिक कर सकती हैं। मेरे साथ कुछ करने में कैसी बहादुरी, रोजाना थोड़ा चलना ही तो है ना, उनमें तो जगह जगह स्वागत होगा। आव भगत होगी, पुष्प मालाएं स्वीकार करने में कैसी बहादुरी, बहादुरी के काम तो उसके बाद आएंगे। मैंने आश्रम के बहनों को इसलिए आरक्षित रखा है कि वे अधिक बहादुरी के काम करें। गांधी जी की इस दूसरी बात से आश्रमवासी महिलाओं की शंका समाधान हो गया। उसके बाद वाले सत्याग्रह आंदोलन में बहनों ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर गांधी जी की महिलाओं के बारे में जो आशा और विश्वास था उसे साबित कर दिखाया।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, यह बात आज दुनिया के अनेक देशों में चर्चित है।
1: बिल्कुल।
0: यह विचार सैद्धांतिक रीति से जिस हद तक स्वीकार किया गया है उतना अभी क्रियान्वित नहीं हो पाया है।
1: जी जी।
0: गांधी जी ऐसा मानते थे अंजलि जी कि कर्तव्य पालन से ही अधिकार फलित होने चाहिए, इसलिए उन्होंने स्त्रियों संबंधित अपनी आकांक्षाएं व्यक्त कर दी। वहीं श्रोता साथियों, 1930 से 32 के सत्याग्रह आंदोलनों में भारत की हजारों नारियों ने इसे अपना कर्तव्य मानकर ग्रहण कर लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत की नारियों में अद्भुत जागृति आई। नारी शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देने वाले महर्षि कर्वे ने कहा कि इतने वर्षों के मेरे प्रयासों से जागृति नहीं आई, वैसी जागृति गांधी जी के नमक सत्याग्रह से आ गई है। जो महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, वे महिलाएं जुलसों की अगुवाही करने लगी हैं।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने कितनी ही जेलों में महिलाओं के वार्ड भर दिए, राष्ट्रीय ध्वज की शान के लिए अपने माथे पर पुलिस की लाठियां भी झेली, पेशावर जैसी जगह पर तो उन्होंने हंसते हंसते गोलियों के वार भी झेल लिए। साथियों, अहिंसक आंदोलन में महिलाओं की भूमिका विषयक गांधी जी की श्रद्धा के बीच शायद माता पुतलीबाई की व्रत निष्ठा और कस्तूरबा की दृढ़ता और तीक्ष्णता देखकर बोए गए होंगे। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका गांधी जी के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका के तीसरे सत्याग्रह से शुरू हुई थी। इस सत्याग्रह के दो मुख्य मुद्दों में से एक यह था कि दक्षिण अफ्रीका के एक न्यायाधीश ने वहां के कानून का अर्थ ऐसा कर दिया था कि जिन लोगों ने ईसाई विधि के अनुसार अथवा कोर्ट में जाकर विधिवत रूप से दर्ज कराकर विवाह किया होगा वही कानूनी विवाह माने जाएंगे, दूसरे नहीं। इसका अर्थ यह था अंजलि जी कि भारतीय मूल के जिन लोगों ने हिंदू विवाह पद्धति के मुताबिक विवाह किए होंगे उनके विवाह रद्द समझे जाएंगे।
1: जी हाँ,
0: यानी कि साथियों इस रीति से विवाहित किसी महिला के पति को दक्षिण अफ्रीका में निवास करने और व्यापार करने का विधिवत अधिकार हो तब भी उसकी विवाहिता के रूप में वह दक्षिण अफ्रीका में ही प्रवेश नहीं पा सकती।
1: बिल्कुल कशिश, यही नहीं हिंदू या मुस्लिम विवाह पद्धति से जिन्होंने विवाह किए हो उनके संतानें भी उनके विधि सम्मत बालक नहीं माने जाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका के भारतीय मूल के लोगों का इस कानून के विरुद्ध जबरदस्त विरोध फूट पड़ा। इस कानून का सक्रिय रीति से विरोध करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस सत्याग्रह में सीधे जुड़ने का निर्णय महिलाओं ने भी किया। सबसे पहले यह निर्णय करने वाली कस्तूरबा ही थी। फिनिक्स आश्रम की अन्य 3 महिलाओं और 12 पुरुषों के साथ उन्होंने बिना इजाजत देश की सरहद पार करके दंडित होने का निर्णय किया।
0: बिल्कुल,
1: उनकी अगुवाई देखकर जोहानिसबर्ग में रहने वाली अन्य कई महिलाएं भी सत्याग्रह से जुड़ गई। तेलुगु और तमिल भाषी सूखे परिवारों की इन महिलाओं ने खानों में जाकर वहां मजदूरी करने वाले गिर मिट्टियों भाई बहनों को आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हमारी बातें चल रही है नारी प्रकरण को लेकर, आगे भी ये बातें हमारी श्रोता साथियों से जारी रहेंगी, लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि नारी प्रकरण के बारे में हमने ढेर सारी बातों को जाना, और गीत से पहले हम जान पाए कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो सरहद पार कर कर भी दंडित होने का उन्होंने निर्णय ले लिया था। यही बात करें तो हजारों की संख्या में गिर मिटिया उमड़ पड़े, अपने घर की चीज वस्तु माथे या पीठ पर लाद कर गिरमिटिया निकल पड़े। कई महिलाओं ने तो कशिश गोद में दुग्ध मुहे बालकों को भी उठा रखा था।
1: बिल्कुल,
0: जंगल के झरने लांगते हुए एक दो महिलाओं के बच्चे हाथ से झिटक कर झरने में बह गए थे, फिर भी कुछ बिना थमे आगे बढ़ता जाता था। बलिदान करने के ऐसे दृश्य देखकर ही शायद गांधी जी को स्त्रियों के बलिदान करने की शक्ति के संबंध में श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी। उस समय की जेल में कस्तूरबा को तो उपवास करने की भी जरूरत महसूस हुई थी, इसलिए 3 महीनों की जेल से जब वे छूटकर आई तब उनको उनका पुत्र देवदास भी बड़ी मुश्किल से पहचान सका था। वली अम्मा नामक एक महिला तो जेल यातना के कष्टों के कारण जेल से छूटने के बाद मर गई थी। आज भी उसकी समाधि पर जोहान्सबर्ग की शमशान भूमि में पूजा होती है। श्रोता साथियों, भारत लौटने के बाद गांधी जी ने जो सार्वजनिक काम संभाले थे उनमें से चंपारण सत्याग्रह के समय कस्तूरबा दुर्गा बहन देसाई, मणि बहन पारी, अवंतिका बाई गोखले, इन महिलाओं ने पुरुषों के साथ काम किया था। उसके बाद वाले सभी सत्याग्रहों में महिलाओं का हिस्सा था ही, पर दांडी कूच के बाद कराड़ी से गांधी जी ने सविनय कानून भंग सत्याग्रह में शामिल होने हेतु महिलाओं से अपील की, जिसके जवाब में लगभग पूरे देश की स्त्री शक्ति जाग उठी। इतिहास में पहली बार भारत में इतनी शक्तिशाली संख्या में महिलाएं बाहर आई। स्थान स्थान पर उन्होंने जेल यातनाएं झेली, जुलूसों में लाठीचार्ज झेला, नमक बनाया, शराब के अड्डों पर विलायती कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग की।
1: बिल्कुल साथियों, गांधी जी वैसे तो स्त्री पुरुष दोनों को समान मानते थे, लेकिन शारीरिक दृष्टि से स्त्रियां भले ही पुरुषों से दुर्बल हों, आत्मा के गुणों की दृष्टि से देखे तो वे पुरुषों की तुलना में जरा से भी न्यून नहीं थी। अंजलि जी,
2: जी जी,
1: ऐसा गांधी जी का विश्वास था। बल्कि करुणा, सहिष्णुता गुणों में स्त्रियां पुरुषों से बढ़कर है, ऐसा गांधी जी मानते थे। वे ये भी मानते थे साथियों कि स्त्री और पुरुषों दोनों को एक दूसरे के गुण विकसित करने के प्रयास करने चाहिए।
2: जी जी,
1: यदि पुरुष स्त्रियों की मृदुता, स्नेह, सहनशीलता जैसे गुण अपने में विकसित करे, और यदि स्त्रियां पुरुषों के पराक्रम, निर्भयता, दृढ़ता से इन सभी गुणों को विकसित करे तो दोनों का व्यक्तित्व परिपूर्ण होगा।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए अपने संपर्क में आने वाली स्त्रियों को वे पुरुषों वाले गुण विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं, और पुरुषों को स्त्रियों के विशिष्ट गुण विकसित करने का अवसर प्रदान करते थे।
2: जी जी,
1: वही श्रोता साथियों, मन्नू बहन गांधी द्वारा वर्णित किस्सा तो मशहूर है। नोआखाली में वहाँ सांप्रदायिक संहार के बाद गांधी जी पद यात्रा कर रहे थे। अंजलि जी, उनके साथ उनकी सेवा में 16 से 17 वर्षीय मन्नू बहन थी। वहाँ का वातावरण भयानक था।
2: बिल्कुल,
1: वहाँ बड़ी संख्या में हत्याएं हो चुकी थी और भय कम नहीं हो रहा था। एक दिन गांधी जी के पैर घिसने वाला पत्थर मन्नू बहन से पिछले आवास पर रह गया। पत्थर तो वैसे बहुत मिल जाते, पर गांधी जी ने कहा कि इस तरह हमसे चीज बस्त विस्मृत ही क्यों होती है। उन्होंने मनु को उसी क्षण वापस जाकर वह पत्र ढूंढ कर लाने को कहा।
2: बिल्कुल
1: साथियों, संघन जाड़ियों वाला सुना रास्ता था, मनु के मन में थोड़ा डर तो था ही। उन्होंने पत्थर ढूंढने जाने के लिए गांव से एकाध स्वयं सेवक को साथ लेने की अनुमति मांगी।
2: जी जी,
1: पर गांधी जी भला क्यों देते, रास्ते बुलावे से पड़ जाए। ऐसे नारियल और सुपारी के वन में से मनु राम नाम लेती निकली और बड़ी मुश्किल से वह पत्थर ढूंढ कर ले आई।
2: बिल्कुल,
1: वापस आकर गांधी जी की गोद में वह पत्थर रखते हुए और किसी त्रास से छुटकारा मिलने के कारण और कुछ अपनी भूल के पश्चाताप के कारण मनु को रोना आ गया। अंजलि जी,
2: बिल्कुल,
1: गांधी जी ने उनसे कहा, आज तेरी परीक्षा हुई और तू उसमें पास हो गई।
0: बिल्कुल, इस तरीके से कशिश कार्यक्रम में हमने जाना नारी प्रकरण में ढेर सारी बातों को। अगले रविवार को फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकरण में नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन से जाने की आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।
3: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: थारी में पासो लावो जोनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: भाई ने बोनो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
7: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
6: होवे आज नाना ना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
8: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है, और आज ही के दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर हाजिर होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नए नए व्यंजनों को आपको बताते हैं, ताकि आप इन व्यंजनों को घर पर आसानी से बना सको। तो साथियों, आज मैं आपको एक और व्यंजन के बारे में बताने वाली हूँ, और उस व्यंजन का नाम है रागी का चिल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि रागी का चिल्ला कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, साथ ही उसका क्या महत्व है। ये सारी बातें हम जरूर करेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। लेकिन शुरुआत में हमारा दस्तूर है कि हम आपको मनोरंजन करवाते हैं, तो पहले सुनवा देते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज मैं आपको एक रेसिपी बताने वाली हूँ, उस रेसिपी का नाम है रागी का चिल्ला। तो दोस्तों, जानते हैं कि रागी का चिल्ला कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, साथ ही रागी के चिल्ले के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारे स्टूडियो में प्रतिभा जी आए हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से रागी का चिल्ला बनाया जाता है और उसका क्या महत्व है। तो पहले सुन लेते हैं उन्हीं की बातों को, फिर हम हमारी बातों को जारी रखेंगे। नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूँगी।
1: अंजलि जी नमस्ते, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतिभा यादव है और मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है प्रतिभा जी, तो आज कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोता साथियों को कौन से व्यंजन की विधि के बारे में बताना चाहेंगी जिसमे परंपरागत पोषण भी है और स्वाद से भी भरपूर है।
1: अंजलि जी, जैसे कि आपको पता ही है कि मिलेट्स का उपयोग पहले काफी होता था, लेकिन समय के साथ साथ ये हमारी थाली से दूर हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: अब इन्हें फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये पौष्टिक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। इस कड़ी में मैं आज आपको और अपने श्रोता साथियों को रागी से एक स्वादिष्ट और आसान रेसिपी बनाना बताऊंगी।
0: बिल्कुल,
1: जिसका नाम है रागी का डोसा।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने मिलेट्स की बात की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ये मोटे अनाज होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें रागी जो है वो बहुत ही पौष्टिक होती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि ये हमारे खाने से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो जैसा कि आप रागी का डोसा बनाना हमें बताने जा रही हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए हमें सामग्री क्या चाहिए और इसे बनाने का क्या तरीका है।
1: जी अंजलि जी, तो सभी श्रोता साथी पेन और कॉपी लेकर सामग्री को नोट कर लें। रागी का आटा आधा कप ले लीजिए, नमक स्वादानुसार, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट एक चम्मच और पानी। पानी हमें उतना लेना है जैसे अगर हमने आधा कप लिया है तो उसका डेढ़ गुना पानी लेना है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने ये सामग्री बताई है और आशा करते हैं कि ये सामग्री हमारे श्रोता साथियों ने लिख ली होगी, तो अब इसे बनाने का क्या तरीका है उसके बारे में आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
1: जी अंजलि जी, सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए, उसमें जो ये आधा कप हमने रागी लिए है ना उसको डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि ये गुठलियां ना पड़े, लम्स ना पड़े। फिर मतलब बैटर को इतना पतला रखना है आपको कि आसानी से डोसा बन जाए।
0: बिल्कुल,
1: इसमें पानी अच्छे से मिला लिया आपने, गुठलियां नहीं हुई, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए ढककर आप रख दीजिए।
0: जी जी,
1: फिर इसके बाद इसमें देख लीजिए 15 मिनट के बाद इसमें नमक एक चम्मच, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट और इसे फिर अच्छे से आप मिला लीजिए।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। अब आप एक तवा ले लीजिए, अगर आपके घर में डोसा बनाने वाला तवा है तो भी ठीक है, अगर नॉर्मल तवा है वो भी चलेगा।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। इसको गर्म कर लीजिए और उस पे थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब बहुत ज्यादा गर्म है तो वो एक नॉर्मल आ जाएगा। फिर उसके बाद एक चमचा लीजिए और बैटर को अच्छे से एक बार चला लीजिए, क्योंकि वो 15 मिनट रखा था ना तो उसमें एक सार हो जाए ताकि।
0: बिल्कुल,
1: फिर चमचे से तवे पे चारों तरफ उसको
0: फैला
1: दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसमें एक डेढ़ चम्मच चारों तरफ फैला दीजिए घी, अगर आप घी खाते हो, तेल खाना है तो तेल करके, फिर थोड़ी देर उसको पकने दीजिए, मीडियम आंच कर लीजिए।
0: जी जी,
1: फिर उसके बाद आप उसको देखेंगे कि किनारे किनारे तवा छोड़ने लगा है, तो इसके मतलब आपका डोसा तैयार है।
0: बिल्कुल,
1: फिर उसको आप तवे से बाहर निकाल लीजिए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि हमें डोसा कैसे बनाना है और किस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारे जो श्रोता साथी हैं वो रागी का डोसा बना सकते हैं, तो इसे हमारे श्रोता साथी किसके साथ खा सकते हैं? हम देखते हैं कि डोसा जो है उसे खाने के लिए हमें कुछ चटनी या कुछ ऐसी चीज की जरूरत होती है, तो आप कौन सी व्यंजन की विधि बताना चाहेंगी जिसके साथ हमारे श्रोता साथी इसे खा सके?
1: जी अंजलि जी, इसके साथ आपको मूंगफली की चटनी, जिसको हम सींग दाना भी बोलते हैं, उसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी।
0: बिल्कुल,
1: उसके लिए सभी श्रोता साथी पहले तो सामग्री नोट कर लें। सिकी हुई मूंगफली ले लें एक कटोरी, रोस्टेड चना, जो चना आता है ना,
0: बिल्कुल,
1: उसके ऊपर छिलके लगे रहते हैं, छिलके हटा के और चना चना कर लें, वो आधी कटोरी, ठीक है। लहसुन की कलियां 10 से 12 ले लें, हरी मिर्च 2 से 3 और आप अपने स्वाद के अनुसार भी जितना तीखा खा सकते हो उतना ले सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अदरक 1 छोटी चम्मच, नमक और पानी और थोड़ा सा दही चाहिए बस।
0: बिल्कुल, तो इस तरीके से उन्हें मूंगफली की ये सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। इसे बनाने का क्या तरीका है?
1: बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है अंजलि जी। एक ग्राइंडर ले लीजिए आप, ठीक है। ग्राइंडर जार में आप ये सारी चीजें डाल दीजिए, मूंगफली, रोस्टेड चना, लहसुन की कली, हरी मिर्च, अदरक, नमक, पानी और 1 चम्मच दही डाल के इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला दीजिए और उसको निकाल लीजिए।
0: बिल्कुल।
1: अब इसको और अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम एक छोटा सा मतलब तड़का लगा देंगे। तो एक आप चमचे में तेल ले लीजिए, एक बड़ा चम्मच, और फिर उसमें राई डाल दीजिए, उड़द की दाल 1 चम्मच डाल दीजिए, 2-3 लाल मिर्च जो साबुत होती है ना वो डाल दीजिए, करी पत्ता डाल दीजिए लास्ट में, वो हो जाए उसको चटनी के ऊपर, जो बाउल में निकाली हुई चटनी है उसके ऊपर डाल दीजिए, फिर इसके साथ आप परोस के
0: खा सकते
1: घर वालों को अच्छे से खिलाइए।
0: बिल्कुल, जैसा कि आपने मूंगफली की चटनी के बारे में बताया है और जो तड़के की विधि आपने बताई है वो हमारे श्रोता साथी जो है वो हर चटनी में अपना सकते हैं। इससे चटनी जो है वो 1-2 दिन अच्छे से चलती है अगर हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो जैसा कि कार्यक्रम में आप बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवा रही हैं और हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है कि बीच बीच में हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को गीत संगीत सुनाते हैं, तो क्यों ना आपकी ही पसंद का एक प्यारा सा गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: मुझे ये गीत बहुत पसंद है जिसका नाम है एक प्यार का नगमा है।
0: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: जैसा कि प्रतिभा जी आपकी पसंद का बहुत ही प्यारा सा गीत हमने और हमारे श्रोता साथियों ने सुना, और गीत के साथ में जब हम खाने पीने की बातें करते हैं तो मजा ही कुछ और होता है। तो जैसा कि ढेर सारी बातों से आपने हमें अवगत करवाया, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि रागी को खाने के क्या फायदे हैं वो भी आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए, क्योंकि हर चीज के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और जब उनके लाभ हमें पता होते हैं तो उसको खाने का मजा हमें और अच्छे से आता है।
1: जी अंजलि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं आपको बताती हूँ कि रागी को खाने से क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको। एक तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी।
0: बिल्कुल,
1: इसमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है जो दांतों और हड्डियों का विकास करता है। दूसरा, आप इसमें ब्लड शुगर भी कंट्रोल होता है। इसमें एक कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वजन कम करता है, मतलब फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिससे बार बार आपको भूख नहीं लगती है।
0: बिल्कुल,
1: खून की कमी को भी ये दूर करता है, मतलब आयरन की जब भरपूर मात्रा शरीर में हीमोग्लोबिन और खून की कमी को यानी कि एनीमिया को दूर करती है। पाचन शक्ति बढ़ाता है, मतलब उच्च फाइबर कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं में भी ये राहत दिलाता है। और सबसे बड़ी चीज है, ये तनाव भी कम करता है। इसमें मौजूद जो अमीनो एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो मानसिक तनाव को प्राकृतिक रूप से कम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी अंजलि जी,
0: तो जैसा कि आपने इसके बेनिफिट्स बताए हैं और अभी के समय में हम जैसा कि देख रहे हैं कि तनाव, खून की कमी होना, कई शारीरिक जो समस्याएं हैं वो श्रोता साथियों को होती ही रहती है, और रागी जो कि इन सारी चीजों को पूरा करता है। तो आशा करते हैं कि ये जो बातें रही हैं वो श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी और वो घर पर इन सारी चीजों को बनाकर अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी लोगों को खिलाएंगे। तो प्रतिभा जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप कार्यक्रम से जुड़ी और बहुत ही प्यारी सी रेसिपी के बारे में आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया।
1: धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।
2: जैसा कि दोस्तों आज हमारे बीच में प्रतिभा जी जुड़े हुए थे और उनके साथ हमारे रेडियो साथी अंजलि जी बात कर रहे थे। प्रतिभा जी ने बताया कि रागी का चिल्ला कैसे बन सकता है, उसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए और साथ ही रागी के महत्व के बारे में बताया। यही मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रागी एक पौष्टिक मोटा अनाज है जिसे मंडुआ भी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर और बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पारंपरिक अनाज होने के साथ साथ आज के समय में संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन सकता है। रागी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि पौष्टिक आहार है। रागी में कैल्शियम और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये हमारे लिए हड्डियों के लिए भी उपयोगी है, पाचन के लिए भी अच्छी है, साथ ही लंबे समय तक तृप्ति यानी कि रागी से बने खाद्य पदार्थ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। रागी अपेक्षाकृत कम पानी में भी उगाई जा सकती है और कई क्षेत्रों की जलवायु के अनुकूल है, इसलिए हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी रागी बहुत उपयोगी है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि परंपरागत अनाज का संरक्षण भी हम कर सकते हैं, जैसे कि रागी जैसे मोटे अनाज हमारी कृषि और खाद्य परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको

साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और आशा है कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से, रागी के चिल्ले के बारे में बताया, रागी के महत्व के बारे में बताया, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। आप हमें ईमेल के द्वारा आपकी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
5: वो अनी माटी में जमी हूँ, अनी माटी तकीस जानी जाऊँ हूँ। मैं खेत हंबारिया, बीज बोया, वो पसल बहाई वो विश्रम करो। तो पसे बाप दादा ने जमी माते मारो अधिकार किन नती। सूरी जन्म तकीस हकदार है, कानून ने आ बात मानी है। ना पन्या पूटे एवं हक को ले सके, ना रिवाज अन सच में बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक, इन्हें पहचान।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, पंचशील के शिलों में हर मानव का उत्थान छिप, सारनाथ के स्तंभों में बुद्ध का वो विज्ञान छिपा, सत्य अहिंसा से आलोकित विश्व धरा करने वाले तक्षशिला और नालंदा में विश्व ज्ञान भरने वाले सर्व धर्म सद्भाव जगाता दिल में स्वाभिमान, हर ग्रंथ से पावन है मेरे भारत का संविधान।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत चल रही थी कि कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी, उसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना। यहीं आज हमारे बीच में एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। आज हम जानेंगे कि गांधी जी के सपनों की राज व्यवस्था क्या थी।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था कि ग्राम पंचायतें सरकार के नियंत्रण और निर्देशों से संचालित होगी। जातिवादी और लैंगिक भेदभाव से भरा पूरा समाज होने के बावजूद उन्हें पता नहीं क्यों यकीन था कि गांव और पंचायतें न्याय और समानता के मूल्यों के आधार पर अपनी भूमिका निभाएगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि भारत के गांव शोषण के केंद्र हैं, अतः इन्हें स्वतंत्र शक्ति नहीं दी जा सकती।
1: साथियों, महात्मा गांधी की ओर से कल्पित संविधान में पंचायत, तालुका और जिला पंचायत की व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। उनका सपना था कि गांव के स्तर पर ही चुनाव हो और वहां से चुने गए प्रतिनिधियों को तालुका, जिला और राज्य सरकारों में स्थान मिले।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ अंजलि, पंचायत, तालुका और जिला पंचायत के बारे में हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं तो राज्य व्यवस्था की मूल इकाई पंचायत होगी। हर गांव अपनी पंचायत का गठन करेगा जिसमें 5 से 11 सदस्यों का चुनाव समुदाय द्वारा किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 बार चुना जा सकेगा। पंचायत को ग्राम सेवकों जैसे चौकीदार, पटवारी और पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने और पद से हटाने का अधिकार होगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि पंचायत गांव में अखाड़े, व्यायामशाला, खेल के मैदान की व्यवस्था करेगी, स्थानीय खेलों, कला शिल्प को प्रोत्साहित करेगी, सभी उत्सवों को मिलकर आयोजित करेगी और मेले का आयोजन भी करेगी।
1: जी हाँ,
0: गांव की चोरी, अपराधों और जंगली पशुओं की सुरक्षा के लिए गांव संरक्षकों की व्यवस्था करेगी, सभी नागरिकों को सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध का प्रशिक्षण प्रदान करेगी, कृषि भूमि के लगान का निर्धारण और एकत्रीकरण करेगी, सहकारिता कृषि को प्रोत्साहित करेगी, सिंचाई के साधन बढ़ाएगी, अच्छे बीजों की व्यवस्था करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि गांव की जरूरत का खाद्यान्न और खाद्य सामग्री में ही उत्पादित हो और वर्तमान वाणिज्यिक खेती को निरुत्साहित करेगी।
1: बिल्कुल अंजलि, और गांव में स्वच्छता रखना और जल निकास की व्यवस्था बनाए रखना, महामारी को फैलने से रोकना, पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना, गांव में अस्पताल और प्रसूति गृह की स्थापना करना और उसका संचालन करना, यहां सभी नागरिकों को मुफ्त उपचार हासिल होगा, इन स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की पारंपरिक विधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: इसी के साथ खादी का उत्पादन बढ़ाना, सहकारी ग्राम उद्योग, दूध उत्पादन, पशुपालन को व्यवस्थित करना, मृत पशुओं के चमड़े के इस्तेमाल के लिए कारखाने चलाना, कृषि और ग्राम उद्योग के उत्पादन का सहकारी विपणन, उपभोक्ता समितियों का संचालन, अतिशेष सामग्री का बाहर विक्रय या निर्यात, सहकारी भंडार गृह की व्यवस्था और गांव के कारीगरों को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना।
0: जी बिल्कुल।
1: व्यवस्था चलाने के लिए कर्ज उठाना, श्रम का भंडार बनाना, आय और व्यय के खातों को व्यवस्थित करना।
0: जी बिल्कुल,
1: ये सारे कार्य पंचायत के हैं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अगर यही बात करें तालुका पंचायत की, तो श्रोता साथियों, गांवों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए तालुका तहसील स्तर की और जिला स्तर की पंचायत होगी। गांव पंचायत से ऊपर की इन पंचायतों की भूमिका और काम परामर्शी होंगे, न कि आदेशात्मक। तालुका और जिला पंचायत ग्राम पंचायत को अपने अधीन नहीं रखेगी। ग्राम पंचायतों के चुने हुए अध्यक्ष प्रमुखों से मिलकर तालुका तहसील पंचायत का गठन होगा।
1: जी हाँ।
0: सामान्यतः 20 पंचायतों या 20,000 की जनसंख्या पर यह पंचायत होगी। इसका कार्यकाल भी 3 साल का होगा और तालुका तहसील पंचायत ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन करेगी और उनके खातों का अंकेक्षण करेगी। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, बड़े स्कूलों, संरक्षकों की व्यवस्था, तालुका स्तर की सहकारिता समितियों और बैंकों की व्यवस्था, गांवों के बीच सड़कों का निर्माण, खेलों को प्रोत्साहन और कृषि की बेहतरी के लिए सतत प्रयास करेगी।
1: जी हाँ बिल्कुल। इसी के साथ जिला पंचायत की बात करें अंजलि, तो तालुका पंचायतों के अध्यक्षों या प्रमुखों से मिलकर जिला पंचायत का गठन होगा।
0: जी हाँ।
1: जिला पंचायत के तहत 12 से ज्यादा तालुका पंचायत नहीं आएंगी। जिला पंचायत तालुका पंचायतों का मार्गदर्शन करेंगी और उनके खातों का अंकेक्षण करेंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: महाविद्यालय, बड़े और विशेष अस्पतालों, जिला संरक्षकों की व्यवस्था, जिला स्तर की सहकारिता समितियों और बैंकों की व्यवस्था, सड़कों के निर्माण, खेलों को प्रोत्साहन और कृषि की बेहतरी के लिए सतत प्रयास करेंगी। जिला पंचायत प्रांतीय सरकारों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और संपर्क में रहेगी। जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से गांधी जी के सपनों की राज व्यवस्था को जान रहे हैं, हमने जाना पंचायत, तालुका और जिला पंचायत के बारे में। आगे हम जानेंगे नगर परिषद, केंद्रीय सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, चुनाव और इसी के साथ अल्पसंख्यक, विदेशी नीति के बारे में। लेकिन क्यों ना हमारे दोस्तों को हम यहाँ एक रुपया सा गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: था। इसी के साथ अंजलि, गांधी जी का संविधान एक सपना हो सकता है, वास्तविकता नहीं, लेकिन दुखद बात यह है कि गांधी जी के सपने को उनके अलावा किसी और ने अपनी आंखों में नहीं उतारा।
1: जी हाँ।
0: इस बात से वे भी वाकिफ थे क्योंकि परिस्थितियां बहुत जटिल थी, उन्हें भी वास्तविकता का एहसास था, इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि दुनिया में अगर कोई एकाध गांधीवादी है तो वे खुद हैं। आज जब भारत में पूरा विश्व आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य के संकट से जूझ रहा है, तब गांधी जी की आंखों में जन्मे इन सपनों को सक्रिय करने की पहल होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ श्रोता साथियों, गांधी किसान, मजदूर, महिलाओं और किसी भी अन्य व्यक्ति की नज़र मन और आत्मा से जीवन को देखते थे। किसी भी लक्ष्य और उसे हासिल करने के माध्यम को चुनने के लिए नीति बनाने वालों में यानी राज व्यवस्था में यही चरित्र होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना गांधी जी के सपनों की राज व्यवस्था के बारे में, जिसमें पंचायत, तालुका और जिला पंचायत के बारे में जाना, इसी के साथ हमने नगर परिषद के बारे में, प्रशासन, न्यायपालिका, केंद्रीय सरकार, साथ ही हमने अल्पसंख्यक, विदेशी नीति, वित्त और कराधान, शिक्षा, अपराध और सजा के बारे में जाना।
1: जी बिल्कुल।
0: अगले रविवार ये कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हम जानेंगे गांधी और समानुभूति के बारे में। तब तक के लिए हम हमारे श्रोता साथियों से इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन
2: होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके,
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
2: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
2: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
4: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
6: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
5: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: हमरो घणी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
8: तो हमरो बोनू, अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी, सचिव ने पंचायत, आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मलीने जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जयवरे अधिकार हंग्रा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
7: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हंगरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बूंद हूँ था का
0: अरे जागृति बूंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थी जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बूंद एटले मन का कहे की पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बूंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बूंद आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बूंद आपड़े भाई बूंदो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके
2: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है
0: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
2: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
5: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा थकी बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
4: हिंडो स्कूल जा आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो
5: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
0: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
5: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

साथियों, नई सोच, नई तकनीक और युवा शक्ति, इन्हीं से बनता है नया भारत का रास्ता। जी हाँ, युवा सपने देखे, ज्ञान को अपनाएं और देश के भविष्य को नई दिशा दें।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ जागृति जी, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर, अपने नियत समय पर एक नए महापुरुष के जीवन परिचय को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती मनाई जाएगी, लेकिन कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसलिए आज ही हम जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से राजीव गांधी जी यानी कि आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान कैसे रहा।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को, जिनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाई जाती है, राजीव गांधी का जीवन भारतीय राजनीति और आधुनिक भारत के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण यात्रा रहा है। वे ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री बने जागृति जी, जब भारत तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए तैयार हो रहा था।
0: जी हाँ,
1: उन्होंने विशेष रूप से युवा शक्ति, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक को देश के भविष्य से जोड़ने पर जोर दिया। आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे उनके विचार और उनके विचारों में किस तरीके से अनेक योगदान की जो चीजें रही थी उनको लेकर।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि भारत के आधुनिक इतिहास में राजीव गांधी जी का नाम एक ऐसे युवा नेता के रूप में लिया जाता है जिन्होंने देश को आधुनिक तकनीक, संचार और नई सोच की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व सरल, शांत और आधुनिक विचारों से प्रभावित था। उन्होंने ऐसे समय में देश का नेतृत्व संभाला जब भारत सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रहा था।
1: बिल्कुल
0: साथियों, बताना चाहेंगे आपको कि जैसा कि अंजलि आपने बताया था कि राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता फिरोज गांधी और माता इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार राजीव गांधी जी का परिवार भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ था। राजीव गांधी जी का बचपन नई दिल्ली में बीता। वे बचपन से ही शांत स्वभाव के थे और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान तथा तकनीक में रुचि थी। उनके छोटे भाई का नाम संजय गांधी था।
1: बिल्कुल जागृति जी, राजीव गांधी का बचपन ऐसे परिवार में बीता जहां देश और समाज से जुड़े विषयों पर लगातार चर्चा होती थी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बचपन से ही उनका स्वभाव राजनीति की बजाय तकनीक और सामान्य विज्ञान की ओर अधिक था। उन्होंने भारत और विदेश में शिक्षा प्राप्त की। उन्हें मशीनों और तकनीक में विशेष रुचि थी, जिसके चलते आगे चलकर उन्होंने विमान उड़ाने का प्रशिक्षण लिया और इंडियन एयरलाइंस में पायलट के रूप में काम किया। श्रोता साथियों, यह तथ्य उनके जीवन की एक अलग तस्वीर दिखाता है। वे सीधे राजनीति में आने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका शुरुआती जीवन एक सामान्य पेशेवर व्यक्ति की तरह रहा। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद परिस्थितियां बदली और राजीव गांधी राजनीति में आए। उन्होंने लोगों के बीच जाकर काम करना शुरू किया और जागृति जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। वर्ष 1981 में वे अमेठी से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वर्ष 1984 में उनकी माता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश एक कठिन दौर से गुजरा। उसी वर्ष राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने।
0: जी हाँ।
1: उस समय उनकी उम्र केवल 40 वर्ष थी। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्रियों में से एक बने।
0: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। जैसा कि राजीव गांधी जी का विवाह सोनिया गांधी जी से हुआ, उनके दो बच्चे हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजीव गांधी अपने परिवार के साथ सरल जीवन बिताना पसंद करते थे। जैसा कि आपने बताया था, वे तकनीक, फोटोग्राफी और संगीत में रुचि रखते थे। राजनीति में आने की उनकी शुरुआत से इच्छा नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों के कारण हुई। उनके छोटे भाई संजय गांधी की 1980 में विमान दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी जी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हुए। वर्ष 1981 में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और अमेठी से लोकसभा चुनाव जीता, जैसा कि आपने बताया था।
1: बिल्कुल,
0: राजीव गांधी जी के जीवन में वर्ष 1984 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी माता और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उस समय उनकी आयु, जैसा कि आपने बताया था, कि 40 वर्ष थी। वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री में से एक बने। उनके सामने देश की एकता, शांति और विकास से जुड़ी अनेक चुनौतियां थी।
1: बिल्कुल,
0: वर्ष 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, राजीव गांधी के कार्यकाल की सबसे प्रमुख पहचान भारत में तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने की सोच रही। उनका मानना था कि यदि भारत को आने वाले समय में मजबूत बनना है तो उसे विज्ञान और तकनीक को अपनाना ही होगा।
0: बिल्कुल,
1: कंप्यूटर और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के विस्तार पर उनके कार्यकाल में विशेष जोर दिया गया। उस समय कंप्यूटर और आधुनिक संचार तकनीक आम लोगों के जीवन में आज की तरह सामान्य नहीं थे। आज हम मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वीडियो कॉल जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। इस तकनीकी बदलाव की शुरुआती दिशा में भारत में दूर संचार और कंप्यूटर को बढ़ावा देने की नीतियों का भी योगदान रहा। कुछ पंक्तियां हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगी कि भविष्य उसी का होता है जो समय के बदलाव को पहचान कर आगे बढ़ने की तैयारी करता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जान रहे हैं, राजीव गांधी जी के जीवन परिचय को लेकर हमारे श्रोता साथियों को कुछ बातें बता रहे हैं, तो बातें निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से राजीव गांधी जी जो हैं तकनीक और आधुनिक भारत की सोच रखा करते थे, यही बात करें दूरसंचार के क्षेत्र में पहल की, तो श्रोता साथियों, राजीव गांधी के दौर में भारत में दूरसंचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुए।
1: बिल्कुल,
0: तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाने की सोच ने आगे चलकर भारत के संचार क्षेत्र में बड़े बदलावों की नींव मजबूत की। आज गांव का व्यक्ति भी मोबाइल फोन के माध्यम से देश दुनिया से जुड़ सकता है, किसान मौसम और बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है और परिवार दूर बैठे अपने लोगों से बात कर सकता है।
1: जी हाँ,
0: ये बदलाव कई दशकों की तकनीकी प्रगति का परिणाम है, लेकिन भारत के तकनीकी आधुनिकीकरण की चर्चा में राजीव गांधी के दौर में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, राजीव गांधी जी ने शिक्षा को देश के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना। उनके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता और समान अवसरों पर ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय की दिशा में पहल हुई। उनका मानना था कि देश का भविष्य उसके बच्चों और युवाओं से बनता है, इसीलिए शिक्षा के साथ विज्ञान, तकनीक और आधुनिक ज्ञान को जोड़ना बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, राजीव गांधी जी युवा शक्ति को देश के विकास की महत्वपूर्ण ताकत मानते थे। उनके कार्यकाल में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
0: बिल्कुल,
1: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के बाद मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदारी का अवसर देना था अंजलि।
0: बिल्कुल,
1: और ये निर्णय भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, भारत का विकास केवल बड़े शहरों के विकास से संभव नहीं है, देश की बड़ी आबादी गाँवों में रहती है। राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उनके समय में स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक सुधार की पहल हुई। बाद में 73वें-74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज और नगरीय निकायों को संवैधानिक आधार मिला। आज ग्राम पंचायतें स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़क, पानी, स्वच्छता, आवास, शिक्षा और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में पंचायतों की भूमिका अहम है।
1: बिल्कुल अंजलि, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था और प्रशासन को अधिक आधुनिक बनाने की दिशा में कई प्रयास भी किए गए। उन्होंने सरकारी व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया। वे चाहते थे कि विकास का लाभ समाज के अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचे और सरकारी योजनाओं का प्रभाव जमीन तक दिखाई दे। उन्होंने प्रशासन में नई तकनीक और आधुनिक प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही श्रोता साथी, उनकी विदेश नीति को लेकर हम बात करें तो राजीव गांधी जी ने भारत की विदेश नीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका मजबूत करने का प्रयास किया।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने परमाणु निस्त्रीकरण और विश्व शांति के मुद्दों को भी महत्व दिया। वे चाहते थे कि दुनिया में हथियारों की होड़ कम हो और विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधिक महत्व मिले।
0: बिल्कुल जागृति जी, राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन केवल उपलब्धियों से भरा नहीं था। उनके कार्यकाल में देश ने कई गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया। उनकी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, इसलिए इतिहास में उनके कार्यकाल को समझते समय उपलब्धियों के साथ साथ उस समय की जटिल परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में उनके फैसलों पर बहस हुई और आज भी इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक उनके कार्यकाल का अलग अलग दृष्टिकोण से मूल्यांकन करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा तकनीक, शिक्षा, युवा शक्ति और आधुनिक भारत के निर्माण को लेकर कही गई जो बातें हैं वो सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनी रही है।
1: बिल्कुल अंजलि, राजीव गांधी जी मूल रूप से एक पायलट थे और राजनीति में उनकी शुरुआत परिस्थितियों के कारण हुई। राजनीति में आने के बाद भी श्रोताओं, उनके व्यक्तित्व में तकनीक और आधुनिकता के प्रति आकर्षण बना रहा। वे कंप्यूटर, विमान, फोटोग्राफी और संगीत जैसी चीजों में रुचि रखते थे। उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता यह थी कि वे भारत को भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करना चाहते थे। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री पद से बाहर हो गए, लेकिन वे भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बलूर में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। उनकी आयु उस समय केवल 46 वर्ष थी। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। उनका जन्मदिन 20 अगस्त भारत में सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इस दिन हमें केवल उनके राजनीतिक जीवन को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि आज का युवा भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल।
0: क्या हमारे गाँव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या युवा तकनीकी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम डिजिटल

0: सुविधाओं के साथ डिजिटल जिम्मेदारी भी समझ रहे हैं? क्या हमारे गांव विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं? इन सवालों पर विचार करना ही किसी महापुरुष के जीवन को याद करने का सार्थक तरीका है।
1: बिल्कुल अंजलि, राजीव गांधी जी का जीवन हमें संदेश देता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए नई सोच, विज्ञान, शिक्षा और तकनीक को अपनाना बहुत जरूरी है। वैसे समय में भारत के प्रधानमंत्री बने जब देश युवा नेतृत्व और आधुनिक दिशा की तलाश में था।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, उनका राजनीतिक जीवन उपलब्धियों, चुनौतियों और विवादों से भरा था, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताया था। लेकिन भारत को आधुनिक तकनीकी युग की ओर ले जाने की उनकी सोच इतिहास में विशेष स्थान रखती है।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर देने, शिक्षा को आधुनिक बनाने और संचार व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। राजीव गांधी जी का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है श्रोता साथियों कि परिवर्तन तभी सार्थक होता है जब नई तकनीक और नई सोच का उपयोग समाज और राष्ट्र के व्यापक हित में किया जाए। उनका जीवन भारतीय लोकतंत्र और आधुनिक भारत के निर्माण की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना राजीव गांधी जी के जीवन परिचय को लेकर ढेर सारी बातों को। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: नफरत

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में राजीव गांधी जी के जीवन परिचय को लेकर वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
0: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हर रविवार को कार्यक्रम कथा कहानी को लेकर मैं हाजिर होती हूँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको शिक्षा प्रद कहानियाँ सुनाती हूँ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम इन कहानियों को सुनें और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं। आज भी एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उस कहानी का शीर्षक है अनमोल विरासत, जो पीढ़ियों को बेहतर बनाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम मनुष्य का जीवन केवल वर्तमान में जीने का नाम नहीं है, हम अपने से पहले आई पीढ़ियों से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत कुछ छोड़ कर जाते हैं। सामान्य रूप से जब हम विरासत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में घर, जमीन, धन, आभूषण या संपत्ति का विचार आता है। लेकिन क्या विरासत का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति है? निश्चित रूप से नहीं। वास्तविक विरासत उससे कहीं व्यापक और मूल्यवान है। आज हम जानेंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमारे लिए मूल्यवान है। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी और उस व्यापक विरासत के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहें कार्यक्रम कथा कहानी में आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहानी का शीर्षक बताया था कि आज जो कहानी सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है अनमोल विरासत। साथियों, कहानी शुरू होती है इस तरह से कि एक छोटे से गांव की पहचान वहाँ के बड़े बड़े मकानों से नहीं बल्कि उसकी मिट्टी की खुशबू, पुराने पेड़ों की छांव और लोगों के आपसी अपनत्व से थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी विशाल शाखाएं दूर तक फैली थी और उसकी छांव में बैठकर गांव के बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। उसी गांव में गोविंद नाम के एक बुजुर्ग किसान रहते थे। उनके पास बहुत अधिक जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन गांव में उनका सम्मान बहुत था। लोग कहते थे कि गोविंद के पास धन कम है पर उसकी सोच बहुत बड़ी है। गोविंद का जीवन सादगी से भरा था। वे हमेशा कहते थे, इंसान की असली संपत्ति वो नहीं होती जिसे वो अपने पीछे छोड़ जाता है, बल्कि वो होती है जो उसके जाने के बाद भी लोगों के जीवन में रोशनी कर रही होती है। इसी तरह साथियों, समय बीतता गया, गोविंद जी बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने पास बुलाया। घर में मौजूद लोगों को लगा कि आज वे अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा करने वाले हैं। सब मन ही मन सोचने लगे कि किसके हिस्से में कितनी जमीन आएगी। गोविंद जी ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज अपनी संपत्ति बांटने वाला हूँ। सब एकदम से चुप हो गए। इसी बीच उन्होंने आगे कहा, हाँ, मैं अपनी विरासत बांटने वाला हूँ, लेकिन मेरी विरासत खेत, घर या पैसा नहीं है। दोस्तों, उन्होंने जैसे ही बोला तो सब हैरान हो गए। हैरानी से गोविंद जी के सामने देखने लगे। तब गोविंद जी ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसमें कुछ पुराने कागज, एक कपड़े की थैली और एक छोटी सी डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी निकाल कर कहा, ये मेरे पिता की डायरी है। इसमें उन्होंने लिखा था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। फिर उन्होंने कपड़े की थैली खोली, उसमें कुछ बीज थे। ये बीज मेरे दादा ने मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था, जमीन से जितना लो उससे ज्यादा लौटाने की कोशिश करना। मैंने इन बीजों से खेतों में पेड़ लगाए। आज गांव में जो छांव दिखाई देती है उसमें उनका योगदान है। परिवार के लोग एकदम ध्यान से सुन रहे थे श्रोताओं। तभी गोविंद जी बोले, और सबसे बड़ी विरासत है दूसरों के काम आना। उन्होंने अपने जीवन की कई घटनाएं सुनाई। एक बार गांव में सूखा पड़ा था। गोविंद के खेत में भी फसल बहुत कम हुई थी और फिर भी उन्होंने अपने घर का अनाज जरूरतमंद परिवारों के साथ बांट दिया था। एक बार गांव का एक गरीब बच्चा पढ़ाई छोड़ने वाला था। गोविंद जी ने उसकी किताबों की व्यवस्था की और कहा था, ज्ञान बांटने से कभी भी कम नहीं होता है। इसी तरह एक बार गांव के रास्ते में घायल व्यक्ति मिला। लोग आगे निकल गए, लेकिन गोविंद जी उसे अपने घर लाए और उसकी सहायता की। तभी गोविंद जी ने कहा कि उस दिन मैंने किसी की मदद नहीं की थी, मैंने अपने इंसान होने की जिम्मेदारी निभाई थी। इस पर परिवार के एक सदस्य बोले, लेकिन दादाजी, जमीन जायदाद का क्या? तभी गोविंद जी मुस्कुराए, जमीन भी मिलेगी और घर भी, लेकिन अगर तुम्हारे पास संस्कार नहीं होंगे तो ये सब तुम्हें खुश नहीं कर पाएंगे। तभी उन्होंने अपनी डायरी परिवार के सबसे छोटे सदस्य को देते हुए कहा, इसे पढ़ना, इसमें मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई लिखी है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ईमानदारी से कमाया हुआ विश्वास, मेहनत से बनाया हुआ चरित्र और दूसरों के लिए किया गया अच्छा काम, यही मनुष्य की सच्ची विरासत है। जैसा कि दोस्तों शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि उस विरासत के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी, तो यही विरासत है कि ईमानदारी से कमाया हुआ विश्वास, मेहनत से बनाया हुआ चरित्र और दूसरों के लिए किया गया अच्छा काम, यही मनुष्य की सच्ची विरासत होती है। श्रोताओं, कुछ वर्षों बाद गोविंद जी इस दुनिया में नहीं रहे। परिवार को उनका घर मिला, खेत मिले और कुछ धन भी, लेकिन उनके जाने के बाद सबसे अधिक याद उनकी संपत्ति की नहीं बल्कि उनके व्यवहार की आई। गांव के लोगों ने उनकी स्मृति में उसी पुराने बरगद के पास पौधे लगाए। जिस बच्चे की उन्होंने पढ़ाई में मदद की थी वो बड़ा होकर शिक्षक बना। उसने गांव में बच्चों के लिए निशुल्क अध्ययन केंद्र शुरू किया। जिस परिवार को उन्होंने सूखे के समय अनाज दिया था उनके बच्चों ने आगे चलकर गाँव में पानी बचाने का अभियान शुरू किया। इसी तरह दोस्तों धीरे धीरे गोविंद जी की एक छोटी सी सीख पूरे गांव की पहचान बन गई। जो मिला है उसे केवल अपने लिए मत रखो, उसमें दूसरों का भी हिस्सा जरूर खोजो।
इसी तरह दोस्तों वर्षों बाद गांव में एक कार्यक्रम हुआ। मंच पर गोविंद जी की तस्वीर लगी थी। उनके परिवार के एक सदस्य ने कहा, हम सोचते थे कि हमारे दादाजी हमें जमीन और घर देकर गए हैं। आज समझ आया कि उन्होंने हमें उससे कहीं बड़ी संपत्ति दी थी, जीने का सही तरीका। कार्यक्रम में मौजूद एक बुजुर्ग ने कहा, गोविंद जी चले गए लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे बीच में है। बरगद की छांव में बैठे बच्चों ने पूछा, कौन सी विरासत? तभी बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, वह विरासत जो तिजोरी में बंद नहीं होती, वो विरासत जो व्यवहार में दिखाई देती है, और वो विरासत जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। और फिर उन्होंने बच्चों से कहा, तुम्हें भी अपने जीवन में ऐसी ही विरासत बनानी है। तभी बच्चों ने पूछा, हम क्या छोड़कर जाएं? तभी बुजुर्ग ने कहा, इतना अच्छा काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी चीजों को नहीं, तुम्हारी अच्छाइयों को याद करें। उस दिन बच्चों ने बरगद के नीचे एक संकल्प लिया श्रोताओं, कि वे प्रकृति की रक्षा करेंगे, ईमानदारी से जीवन जिएंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, ज्ञान बांटेंगे और अपने गाँव को बेहतर बनाने में अपना योगदान जरूर देंगे। इसी तरह समय आगे बढ़ता गया, बरगद की शाखाएं और फैलती गई, नई पीढ़ियां आती रही, पुरानी पीढ़ियां जाती रहे, लेकिन गोविंद जी की सिख पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। और यही थी उनकी अनमोल विरासत। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है दोस्तों कि विरासत केवल वो नहीं है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, विरासत तो वो भी है जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ते हैं। हम अपने बच्चों को घर दे सकते हैं लेकिन उससे बड़ी बात है उन्हें अच्छे संस्कार देना। हम उन्हें पैसा दे सकते हैं लेकिन उससे भी बड़ी बात है उन्हें मेहनत और ईमानदारी का मूल्य समझाना। हम उन्हें जमीन दे सकते हैं लेकिन उससे भी बड़ी बात है उन्हें प्रकृति की रक्षा करना सिखाना। हम उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं लेकिन उससे भी बड़ी बात है उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाना। सच्ची विरासत वही है जो हमारे बाद भी किसी के जीवन को बेहतर बनाए। तो दोस्तों ये थी कहानी, और इस कहानी से हमें शिक्षा भी बहुत अच्छी मिलती है। और कहानी का शीर्षक था, अनमोल विरासत जो पीढ़ियों को बेहतर बनाती है। आगे भी कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है जो मैं आपसे जरूर करूंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको गीत से पहले बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी अनमोल विरासत को लेकर, और शुरुआत में मैंने आपको कहा भी था कि हमारी असली विरासत क्या हो सकती है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भौतिक संपत्ति तो हमारी असली विरासत हो ही नहीं सकती, वास्तविक विरासत तो उससे कहीं व्यापक और मूल्यवान है। संस्कार, विचार, ज्ञान, परंपराएं, ईमानदारी, मेहनत, प्रकृति के प्रति प्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवता की भावना, ये ऐसी विरासत है श्रोता साथियों जिनका मूल्य किसी धन संपत्ति से कहीं ज्यादा अधिक होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मनुष्य की सबसे अनमोल विरासत वो है जो उसके बाद भी समाज और आने वाली पीढ़ियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करती हो। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे श्रोताओं कि किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी उसके संस्कार होते हैं। धन कम या ज्यादा हो सकता है, संपत्ति बढ़ या घट सकती है, लेकिन अच्छे संस्कार व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। आज की तेज गति वाली दुनिया में सफलता की इच्छा हर व्यक्ति के भीतर है, लेकिन श्रोताओं सफलता का रास्ता कैसा हो ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर किसी व्यक्ति को उसके परिवार से ईमानदारी की सीख मिली है तो वो कठिन परिस्थितियों में भी गलत रास्ते को चुनने से पहले कई बार सोचेगा। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति सच्चा होना नहीं है, ये स्वयं के प्रति भी ईमानदार रहने का नाम है। इसी के साथ हमारे पूर्वजों का जीवन आज की तुलना में बहुत कठिन रहा है। सीमित संसाधन थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत की, धैर्य रखा और संघर्ष से अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाया। उनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं बल्कि हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। धन बांटने से कम हो सकता है लेकिन ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थी को ज्ञान देता है तो वो केवल एक बच्चे का भविष्य नहीं बदलता दोस्तों, बल्कि वो आने वाले समय को प्रभावित करता है। इसी तरह प्रकृति की बात करें तो हमारे पूर्वजों ने हमें केवल जमीन और घर नहीं दिए, उन्होंने हमें नदियाँ दी हैं, जंगल दिए, पहाड़ दिए, खेत, तालाब, पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन भी दिए, लेकिन ये विरासत हमारी निजी संपत्ति नहीं है, प्रकृति आने वाली पीढ़ियों की भी है। अगर हम आज पानी को व्यर्थ बहाएंगे, जंगलों को नुकसान पहुँचाएंगे, पर्यावरण के प्रति लापरवाह रहेंगे तो हम आने वाली पीढ़ियों के हिस्से को कम कर देंगे। इसीलिए प्रकृति की रक्षा करना भी विरासत को सुरक्षित रखना है। साथ ही श्रोता साथियों आपसे कहना चाहूंगी कि विरासत प्राप्त करना जितना सुखद है उसे संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें अपने पूर्वजों से कोई अच्छी परंपरा मिली है तो उसे आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी असली पहचान इस बात से नहीं बनेगी श्रोताओं कि हमने जीवन में कितना पाया, बल्कि इस बात से बनेगी कि हमने अपने बाद दुनिया के लिए कितना अच्छा छोड़ा। इसलिए आज से आप एक छोटी सी शुरुआत करें, एक अच्छा संस्कार दें, एक पेड़ बचाएं, एक व्यक्ति की मदद करें, एक ज्ञान की बात आगे पहुंचाएं, एक गलत काम से स्वयं को रोकें, क्योंकि यही छोटी छोटी कोशिशें मिलकर आने वाली पीढ़ियों की बड़ी विरासत बनेगी। तो आइए श्रोता साथियों ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व कर सके। धन समाप्त हो सकता है जैसा कि हमने आपको पहले कहा था, इमारतें पुरानी हो सकती है, नाम भी समय के साथ धुंधला पड़ जाएगा, लेकिन अच्छे कर्मों की खुशबू पीढ़ियों तक बनी रहती है और यही है हमारी सबसे अनमोल विरासत। तो दोस्तों ये थी कहानी और इससे जुड़ी छोटी मोटी बातें। ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी, इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी क्योंकि समय हो चला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। पर जाने से पहले आपको पता बताना चाहूंगी ताकि आपको हमारा आज का एक कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारे मेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार, साथ ही आप सभी को छोड़े चलती हूँ इस गीत के साथ में।

हेलो बच्चों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी। लेकर आ गई हूँ बच्चों कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की को लेकर नई नई कहानियों के साथ में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में जब भी हाजिर होती हूँ तो कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाती हूँ आपको, जो कि आपके जीवन में आपको नई नई सीख देते हैं। तो आज भी बच्चों कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत ही प्यारी कहानियों को लेकर हाजिर हुई हूँ। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही कहानी जिसमें एक कूड़े का डब्बा भी बात करता है, नाराज होता है और आखिर में बच्चों को एक जरूरी बात सिखाता है। बच्चों आपने कूड़ेदान तो बहुत देखे होंगे, कोई हरे रंग का, कोई नीले रंग का, तो कोई लोहे का, तो कोई प्लास्टिक का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कूड़ेदान बोल पाता तो वह हमसे क्या कहता? तो बच्चों कार्यक्रम के माध्यम से इस प्यारी से कहानी को मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।

0: मेहमान।
1: बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। जैसा कि गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं कूड़े का डब्बा रो पड़ा। जी हाँ बच्चों, एक छोटे से सुंदर गांव में चिंटू नाम का एक बच्चा रहता था। चिंटू बहुत ही चंचल और हसमुख था। उसे खेलना, दोस्तों के साथ घूमना और तरह तरह की चीजें खाना बहुत पसंद था। लेकिन चिंटू की एक आदत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वह जहाँ भी जाता वहीं उसका कचरा छोड़ देता था। चिप्स का पैकेट हो तो सड़क पर, टॉफी का रेपर हो तो मैदान में, पानी की बोतल हो तो स्कूल के पीछे, और अगर कोई उसे समझाता तो वह हंस कर कहता, अरे एक छोटे से कागज के टुकड़े से क्या फर्क पड़ेगा। चिंटू की माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटा कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। चिंटू कहता, हाँ माँ डाल दूंगा। लेकिन बच्चों, अगले दिन फिर से वह वही करता। एक दिन चिंटू स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक टॉफी खरीदी, टॉफी खाई और उसका चमकदार रेफर सड़क पर फेंक दिया। वहीं पास में एक बड़ा सा कूड़ेदान रखा था। कूड़ेदान ने चिंटू को देखा, वह चुप रहा। चिंटू आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, चिंटू रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क पर कोई नहीं था। वह फिर से आगे बढ़ा। फिर आवाज आई, बच्चू चिंटू मुझे देखो। चिंटू डर गया, उसने इधर उधर देखा। आखिर उसकी नजर उसे कूड़ेदान पर पड़ी। चिंटू ने हैरानी से पूछा, अरे तुमने मुझे बुलाया। कूड़ेदान बोला, हाँ चिंटू मैंने ही तुम्हें बुलाया। चिंटू की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन तुम तो कूड़ेदान हो, तुम बोल कैसे सकते हो। कूड़ेदान ने लंबी सांस ली और कहा, आज मेरा मन बहुत दुखी है, इसीलिए शायद मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। चिंटू ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो। कूड़ेदान बोला, क्योंकि मैं यहाँ लोगों की मदद करने के लिए रखा गया हूँ, लेकिन लोग मेरे पास आकर भी कचरा अंदर नहीं डालते। क्योंकि मैं यहाँ लोगों की मदद के लिए रखा गया हूँ, लेकिन लोग मेरे पास आकर भी मेरे अंदर कचरा नहीं डालते। चिंटू चुप हो गया। कूड़ेदान ने कहा, देखो तुम्हारे हाथ में जो टॉफी का रेफर था उसे तुमने सड़क पर फेंक दिया। चिंटू ने नीचे देखा, रेपर सचमुच सड़क पर पड़ा था। कूड़ेदान बोला, मैं तुम्हारे पास ही तो खड़ा था, तुम मेरे अंदर डाल सकते थे। चिंटू ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। कूड़ेदान बोला, गलती हो जाना बुरी बात नहीं, लेकिन गलती समझ आने के बाद उसे दोहराना अच्छी बात नहीं है। चिंटू ने तुरंत रेपर उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। कूड़ेदान मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद चिंटू। चिंटू ने पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। कूड़ेदान हंसते हुए बोला, नहीं मैं तो रोज लोगों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती। चिंटू ने पूछा, फिर मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कूड़ेदान बोला, क्योंकि शायद आज तुम्हें अपनी गलती समझने की जरूरत थी। चिंटू सोच में पड़ गया। अगले दिन वह स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि मैदान में बहुत सारे कागज और प्लास्टिक के पैकेज पड़े हुए हैं। कुछ बच्चे टिफिन खाने के बाद रेपर वहीं छोड़ दे रहे थे। चिंटू ने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों कचरा जमीन पर मत फेंको, कूड़ेदान में डालो। एक दोस्त हंसकर बोला, तुम कब से इतने समझदार हो गए। चिंटू बोला, कल मुझे कूड़ेदान ने समझाया है। सभी बच्चे हंसने लगे। एक बच्चे ने कहा, कूड़ेदान भी बोलता है। चिंटू मुस्कुराया और बोला, अगर हम उसकी बात सुनना चाहें तो वह जरूर बोलता है। बच्चों ने उसकी बात मजाक में टाल दी। लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल में एक समस्या खड़ी हो गई। बारिश हुई, स्कूल के पास नाली में प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें और कागज जमा हो गए थे। पानी का रास्ता बंद हो गया था। स्कूल के बाहर पानी जमा होने लगा। बच्चों को आने जाने में परेशानी होने लगी। शिक्षक ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों यह परेशानी सिर्फ बारिश की वजह से नहीं हुई है, हमने जगह जगह कचरा फेंका जिसके कारण पानी का रास्ता बंद हो गया। चिंटू को तुरंत कूड़ेदान की बात याद आ गई। बच्चों, उसने अपने दोस्तों से कहा, देखा अगर हम कचरा इधर उधर नहीं फेंकते तो यह समस्या नहीं होती। इस बार उसके दोस्तों ने भी उसकी बात मानी। सभी बच्चों ने मिलकर स्कूल के आसपास का कचरा उठाया, किसी ने कागज उठाए, किसी ने प्लास्टिक की बोतल उठाई, किसी ने सूखे पत्ते एक जगह पर जमा किए, फिर सबने कचरा सही जगह पर डाला। शिक्षक ने बच्चों की तारीफ की और कहा, बहुत अच्छा, याद रखो साफ सफाई सिर्फ सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है, हम सभी की जिम्मेदारी है। चिंटू ने कहा, सर अब हम अपने स्कूल को साफ रखेंगे। शिक्षक ने मुस्कुरा कर कहा, और सिर्फ स्कूल को ही नहीं, अपने घर, गली और पूरे गांव को। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हम अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो श्रोता साथियों, हमने देखा कि कहानी में एक और बदलाव आया। अब चिंटू ने एक नई आदत बना ली थी, वह जब भी किसी बच्चे को कचरा जमीन पर फेंकते हुए देखता तो उसे प्यार से समझाता, भैया कचरा कूड़ेदान में डालिए। कभी कभी कोई उसकी बात मान लेता और कभी कोई नहीं मानता था, लेकिन चिंटू ने समझाना बंद नहीं किया। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल में स्वच्छता टोली बनाई। हर दिन बच्चे स्कूल के आसपास देखते कि कहीं कचरा तो नहीं पड़ा। उन्होंने अपने स्कूल का एक सुंदर सा पोस्टर भी बनाया, कचरा जहाँ तहाँ नहीं कूड़ेदान में जाएगा। दूसरा पोस्टर था, मेरा घर, मेरी गली, मेरा स्कूल, सब साफ और सुंदर। धीरे धीरे स्कूल बदलने लगा। जो बच्चे पहले चॉकलेट के रेपर जमीन पर फेंक देते थे, अब उसे कूड़ेदान में डालने लगे। जो बच्चे बोतल मैदान में छोड़ देते थे, वे उसी जगह रखने लगे। शिक्षक भी बहुत खुश थे। एक शाम चिंटू उसी पुराने कूड़ेदान के पास गया। उसने देखा कि कूड़ेदान साफ था और उसके आसपास भी कचरा नहीं था। चिंटू ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो तुम खुश हो ना? कूड़ेदान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत खुश हो ना? चिंटू ने पूछा, क्यों? कूड़ेदान बोला, क्योंकि अब लोग सिर्फ मुझे देखते नहीं हैं, मेरी जरूरत को भी समझते हैं। चिंटू हंसकर बोला, और अब तुम रोते नहीं हो? कूड़ेदान बोला, नहीं, अब मेरी आँखों में खुशी के आंसू हैं। चिंटू ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी कचरा सड़क पर नहीं फेंकूंगा। कूड़ेदान बोला, और सिर्फ खुद नहीं दूसरों को भी प्यार से समझाना। चिंटू ने सर हिलाया, पक्का वादा। उसी दिन से चिंटू और उसके दोस्तों ने अपने गांव में स्वच्छता का एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों से कहा, साफ गांव, स्वस्थ गांव। और देखते ही देखते बच्चों, उसका छोटा सा प्रयास पूरे गांव में बदलाव लाने लगा। अब गांव की गलियां पहले से ज्यादा साफ दिखाई देती थी। बच्चे भी खुश थे, बड़े भी खुश थे, और वह पुराना कूड़ेदान भी। वह अब बिल्कुल भी नहीं रोता था, क्योंकि आखिरकार लोगों ने बात समझ ली थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत ही जरूरी बातें सीखने को मिलती है। पहली बात तो बच्चों यह कि कचरा हमें हमेशा सही जगह पर डालना चाहिए। अगर हमारे आसपास कचरा रहेगा तो वातावरण गंदा होगा और कई सारी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। दूसरी सीख बच्चों है कि सफाई किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। हमारा घर हो, स्कूल हो, सड़क हो या पार्क हो, उसे साफ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। तीसरी सीख बच्चों हमें यह मिलती है कि छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। चिंटू अकेला था, लेकिन उसने शुरुआत खुद से की, फिर उसके दोस्त जुड़े और धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। और बच्चों, सबसे जरूरी बात, जब भी आपके साथ कोई कागज, टॉफी का रेपर या कोई दूसरा कचरा हो, तो उसे सड़क पर मत फेंकिए। कूड़ेदान थोड़ा दूर हो तो कुछ कदम चलकर वहां तक जाइए, क्योंकि याद रखिए बच्चों, स्वच्छता की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे ही होती है। तो बच्चों, आज हमें एक छोटा सा संकल्प लेना है कि मैं कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा, मैं अपने घर, स्कूल को साफ रखूंगा, मैं दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्यार से समझाऊंगा और अपने आसपास को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान दूंगा। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में कूड़े का डब्बा रो पड़ा था, लेकिन हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हमारे आसपास की गंदगी देखकर हमारी धरती कभी न रोए। आशा करती हूँ कि बच्चों, ये प्यारी सी कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। आगे भी मैं आपको एक प्यारी सी कहानी और सुनाऊंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलो।

बच्चों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। और जैसा कि बच्चों गीत से पहले ही हमने बहुत ही प्यारी कहानी सुनी थी, अब यही एक और प्यारी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है तिरंगे की छोटी सी पतंग। तो चलिए बच्चों सुनते हैं कहानी को। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बच्चा रहता था। मोहन को पतंग उड़ाना बच्चों बहुत पसंद था। 15 अगस्त भी आने वाला था। गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही थी। चारों तरफ तिरंगे झंडे लगे थे और बच्चे देशभक्ति के गीतों की तैयारी कर रहे थे। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ इस बार मैं भी एक बहुत ही सुंदर पतंग बनाऊंगा। माँ मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बेटा, लेकिन ऐसी पतंग बनाना जो सबसे अलग हो। मोहन ने कागज लिया और अपने पतंग पर तिरंगे के तीन रंग बनाए, केसरिया, सफेद और हरा। बीच में उसने नीले रंग का एक छोटा सा चक्र भी बनाया। पतंग तैयार हुई तो मोहन उसे देखकर मैदान में पहुंचा। उसका दोस्त सोनू बोला, मोहन तुम्हारी पतंग तो बहुत सुंदर है। मोहन मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ पतंग नहीं है सोनू, यह हमारे देश के सम्मान की पतंग है। दोनों ही पतंग उड़ाने लगे। कुछ देर बाद हवा चली और मोहन की पतंग बहुत ऊंची उड़ने लगी। मोहन खुशी से बोला, देखो मेरी पतंग आसमान में कितनी ऊंची पहुंच गई। तभी उसकी पतंग की डोर एक पेड़ की शाखा से उलझ गई। मोहन घबरा गया, उसने डोर खींची और पतंग उलझ गई। तभी सोनू ने कहा, जोर मत लगाओ मोहन, कहीं पतंग फट न जाए। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे डोर सुलझाई और आखिरकार पतंग फिर से आसमान में उड़ने लगी। मोहन ने आसपास की ओर देखते हुए कहा, सोनू आज मुझे एक बात समझ आई। सोनू ने कहा, क्या मोहन? मोहन बोला, देश भी इसी पतंग की तरह है। इसी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम सभी को मिलकर इसकी डोर संभालनी पड़ेगी। सोनू मुस्कुराया और बोला, अगर हम डोर छोड़ दे तो? मोहन बोला, तो पतंग ही वो भटक सकती है। दोनों दोस्त कुछ देर तक तिरंगे वाली पतंग को देखते रहे। फिर मोहन ने कहा, हम अपने देश के लिए बड़े बड़े काम अभी से नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी अच्छी बातें तो कर सकते हैं। सोनू ने पूछा। जैसे मोहन ने गिनना शुरू किया, अपने स्कूल को साफ रखना, पेड़ लगाना, बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की मदद करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना और अपने देश का सम्मान करना। सोनू ने कहा, तो आज से हम दोनों मिलकर ये काम करेंगे। दोनों दोस्त ने हाथ मिलाया। आसमान में तिरंगे रंगों वाली पतंग लहरा रही थी और नीचे दो बच्चे अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प ले रहे थे। तो बच्चों, इस प्यारी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है, देश से प्यार सिर्फ झंडा लहराना या देशभक्ति गीत गाने से नहीं होता। देश प्रेम हमारे छोटे छोटे अच्छी आदतों में भी दिखाई देता है। जब हम ईमानदारी से पढ़ते हैं, स्वच्छता रखते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और अपने देश का सम्मान करते हैं, तब हम अपने देश को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं। इसलिए बच्चों हमेशा याद रखिए, देश बड़ा काम करने से नहीं, छोटे छोटे अच्छी जिम्मेदारियां निभाने से महान बनता है। तो बच्चों, इस प्यारी सी कहानी के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की से मैं विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे सी गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

तो बच्चों, इस प्यारे से गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में मैंने आपको जो प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाई और जो गीत संगीत सुनाए प्यारे प्यारे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो बच्चों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी दीदी मनीषा दीदी को। इसी अनुमति के साथ बाय बाय।

भाई बोनो, घर की निकलते वक्त कोई आपड़ो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्ती जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपड़ो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, नारी जब अपने सपनों को पहचान लेती है तो हर मुश्किल को आसान कर देती है, खुद सशक्त बनकर दूसरी महिलाओं को भी नई उड़ान देती है। जी हाँ, एक महिला का साहस कई जीवन बदल सकता है। एक महिला की जागरूकता पूरे समाज को संभाल सकती है। जो खुद आगे बढ़ती है वह औरों के लिए भी रास्ते खुलती है। जी हाँ दोस्तों, हौसलों के लो जलाकर चल पड़ी है वो, हर बाधा को पार कर आगे बढ़ी है वो। आज अपनी प्रेरणा से कई महिलाओं के सपनों को नई दिशा दे रही है वो।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्र रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, जैसा कि हमारी जो शुरुआती चंद पंक्तियां रही उसे से आप समझ गए होंगे कि आज कार्यक्रम हमारे मेहमान में जो शख्सियत जुड़ने जा रही है, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष से सफलता का रास्ता तय किया और अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा और जागरूकता की मिसाल की ओर ले जा रही हैं। तो आज कार्यक्रम में ऐसे ही समुदाय की एक महिला जुड़ने जा रही हैं, जिन्होंने अपने जीवन को तो बदला ही, साथ ही दूसरी महिलाओं के जीवन को भी बदलने की निरंतर कोशिश कर रही हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई ढेर सारी बातों को। नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वाग्र रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: मेरा नाम मीरा बरगोट, ग्राम पंचायत रोंजिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राज्य राजस्थान।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आप घाटोल की निवासी हैं, तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है वो कैसे बीता।
1: हमारा बचपन तो अच्छा भी रहा और कठिन समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। बचपन तो हम पहली से लगाकर पांचवी तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़े। तो हम जब राजीव गांधी स्कूल खुली तो हम खुद गए स्कूल पढ़ने के लिए, हमको पढ़ना आई हूँ। पहले तो क्या इतने माता पिता वो इच्छुक थे कि इनको पढ़ाएं, पढ़ना भी जरूरी नहीं थे, फिर भी हम स्कूल खुली पाठशाला थे उसमें पढ़ने के लिए गए। आठवीं तक स्कूल थी गांव में, तो दसवीं तक भी स्कूल नहीं थी, आठवीं तक ही थी। तो वहाँ से पढ़ाई शुरू कर हम सातवीं क्लास में पढ़े, वहाँ से आठवीं क्लास में हम गढ़ी हॉस्टल में गए।
0: बिल्कुल।
1: वहाँ नाइन्थ क्लास वहाँ तबियत बीमार हो गई, इसकी वजह से वहाँ से हम फेल होकर वापस हमारे गांव में पढ़ाई की। दसवीं तक स्कूल थे दूसरी स्कूल में गांव से दूर। के बाद हमारा तो बहुत कठिन समय में हम पढ़ाई की, कॉलेज तक की हमने तो।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कॉलेज तक शिक्षा प्राप्त की है और आपका जो जीवन है वो बहुत कठिन भी रहा और सरल भी रहा, कह सकते हैं कि दोनों चीजें उसमें मिक्स थी। तो आपने इन सारी चीजों को कैसे दूर किया? कभी पढ़ाई में किसी चीज का अभाव लगा तो क्या किया, कैसे मेहनत की, माता पिता का सहयोग आपको कैसे मिला?
1: कभी कभी तो उनकी स्थिति जानते हुए हमने थोड़ा कठिन परिश्रम का सामना भी किया। कभी कभी कितनी बातों की, आने जाने की समय, पढ़ाई में आने जाने की समस्या रहती, पैसों की भी समस्या रहती, सब समस्या जूझते हुए हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ने की कोशिश की हम।
0: बिल्कुल। तो उसके बाद का समय आपका कैसा रहा? जैसा कि आप शादीशुदा है मैं आपको देख पा रही हूँ, तो उसके बाद आपको आपके ससुराल से क्या सपोर्ट मिला? अभी के समय में आप क्या कर रही हैं अपने जीवन में?
1: हमने बारहवीं पास होके हमने शादी कर ली। बारहवीं के बाद हमने कॉलेज यहाँ ससुराल से की मैंने।
0: बिल्कुल।
1: तो कॉलेज के बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी, घर गृहस्थी में
0: जुड़ गए। हाँ। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने ससुराल आकर कॉलेज किया, तो आपके ससुराल वालों का कैसे आपको सपोर्ट मिला, किस तरीके से उन्होंने आपको मदद की?
1: पहले तो मना बोल रहे थे, घर गृहस्थी में तो कर हो सके तो करो, पर फिर हमने बोला कि हमको करना ही है, पढ़ना ही है, हमको कॉलेज तक कर, कॉलेज करे या बीएड करे, एसटीसी करे, कुछ भी करे, इसके बाद तो पढ़ाई भी हमको यहाँ तक तो ले जाइयो, तो इसकी कॉलेज कर ली, इसके बाद फिर आगे पढ़ाई नहीं कर सके।
0: बिल्कुल। तो अभी के समय में आप क्या कर रही हैं अपने जीवन में?
1: पारिवारिक में आ गए, इसके बाद हम धीरे धीरे वो हमने घर पर सिलाई मशीन का काम शुरू किया। बेरोजगार बेटा तो क्या करे, कुछ तो कर रही हूँ करके।
0: बिल्कुल।
1: हमारी एक संस्था आई थी वनवासी कल्याण करके, तो इसमें यहाँ के जागरूक लोग थे, तो उन्होंने बोला कि ये महिला ये कर सकती है यूँ, तो उनको मेरे पास भेजा। तो उन्होंने फिर मेरे पति ने कहा क्या ऐसे क्या है, तो मेरे को बोला कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ यूँ, तो उसमें मैं जुड़ गई। तो उसमें क्या मासिक मानदेय था महीने का 1000 रुपये, महीने का सिर्फ, दो कंडे बच्चों को पढ़ाना ही हो, संस्कार देना बच्चों को ही हो, तो फिर ऐसे जुड़ गई मैं। जुड़ने के बाद काफ़ी अनुभव किया मैंने, बाहर ट्रेनिंग के लिए गई, तो बाहर की दुनिया कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, जाने से क्या है। इसके बाद फिर कोरोना आ गया तो वो बंद हो गई, इसके बाद कोरोना के पहले यहाँ वागदरा संस्था में जुड़ गई मैं। तो वहाँ से जुड़ कर मैंने पहले तो सक्षम समय में जुड़ी, वहाँ पर हर मीटिंग में जाना मेरे को अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी सबकी। फिर मैंने सोचा कि ये तो सब अपने शिक्षा के बारे में ही, योजना के बारे में ही, खेती बाड़ी के बारे में सब नहीं बातें की, तो फिर मैंने इसको कभी यूँ नहीं सोचा कि कैसा भी समय निकाल कर हर मीटिंग में मैं भाग ले लेती हूँ।
2: बिल्कुल, तो अभी आपके जीवन में क्या परिवर्तन?
1: इसके बाद मेरे जीवन में इस समूह से जुड़ने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया मैंने, तो फिर सिलाई का काम शुरू कर दिया था। वो करते हुए भी मैंने इच्छा जुड़ी रही, सब करते हुए घर का काम करती, फिर वो सिलाई वाला भी करती, पारिवारिक जीवन में कहीं भी आना जाना वो भी करती। इसके बाद फिर इच्छा जुड़कर मुझे काफी अनुभव मिला कि मुझे खुद को पता नहीं था कि सरकारी योजना कितने प्रकार की है और इनका कितने लोगों को क्या फायदा मिल रहा, हमको क्या फायदा मिल रहा। तो फिर मैंने जुड़ के ये मुझे काफी अनुभव हुआ, क्यों नहीं इसके माध्यम से मैं भी किसी को सहयोग कर सकती हूँ।
2: बिल्कुल,
1: और मैं भी खुद बदल सकती हूँ दूसरों को भी। तो फिर मैंने खुद को यहाँ पर घर पर पोषण वाड़ी लगाई, पेड़ पौधे लगाए, यहाँ से जुड़ गई, सब जब से वागधारा में जुड़ी तभी मेरा बगीचा पूरा ही हुआ।
2: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने ये पोषणवाड़ी लगाई है और आपने बहुत सारी चीजें करी हैं, और क्या परिवर्तन आया और क्या क्या चीजें आपने जीवन में सीखी हैं और अभी आप किस पद पर हैं?
1: देखो मैं जैसे जुड़ी तब से मुझे छोटे छोटे हमारे महिला समूह में सक्षम संबंध था, उसमें भी मुझे अध्यक्ष के साथ एक ग्रुप भी रखा।
2: बिल्कुल,
1: इसके बाद धीरे धीरे मुझे संगठन मिले गए। इसके बाद हम पहले क्या चवराज मित्र के रूप में हमें लगाया गया था, सीआरपी बोलते थे, तो एक जिम्मेदारी थी किसी गांव की।
2: बिल्कुल,
1: तो उसमें एक मंथली, तो फिर मैंने वो भी किया, 3 साल तक वो किया। फिर उसमें क्या किया कि एक अस्थाई के रूप में दूसरे लगाना था, यूँ महीने में तो कहीं भी घूम के 6 गांव में तो एक दिन में भी मीटिंग कर सकते हैं अपन।
2: बिल्कुल,
1: तो फिर हमेशा फिर मैंने वो छोड़ दिया कि मैं महीना रेगुलर में नहीं जा सकती हूँ, एक गांव में तो एक दिन में 2-3 गांव भी कवर कर सकती थी, पर वो पूरा महीना जाना पड़ता, इसके लिए मैंने घर गृहस्थी घर का काम की वजह से मैंने वो नहीं किया यूँ फिर छोड़ दिया। इसके बाद हमारा संगठन बना, तो उसमें मैं जुड़ी, संगठन में सदस्य बन गई। संगठन सदस्य में हर मासिक बैठक में जाती है और यहाँ की समस्या सुनती, तो उसमें मुझे चाची पद दे संगठन में, तो हमारे गांव की समस्या को लेकर मैं ब्लॉक लेवल तक हम सब सदस्य मिलकर जाते, जिला लेवल तक जाते, राज्य लेवल तक, ऐसी समस्या हो बड़ी से बड़ी समस्या फिर संगठन के सदस्य मिलकर, तो मैं संगठन में तो मुझे अध्यक्ष का पद है। इसके बाद मुझे जिला मंच की सदस्य बनाई, उसके बाद राज्य मंच महिला
2: की भी सदस्य बना दी। बिल्कुल, तो आपको ये सारे अनुभव जो मिले हैं उसको मिलने के बाद आपके मन में क्या खुशी है, आप अपने आप में क्या महसूस करती है और आपके परिवार का सपोर्ट आपको कैसे मिला?
1: इससे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि देखो मेरे पास यूँ नहीं सोचती है कि नौकरी है तभी ये सब कर रही हूँ, नौकरी वालों से भी मेरे पास बड़ा पद है।
2: बिल्कुल,
1: मैं जरूरी थोड़ा नौकरी करो तभी पद मिलते है, और किसी के पास अच्छी सैलरी उसके पास ही पद होना चाहिए वो नहीं सोचती मैं यूँ। मेरे पास यूँ हो रहा मुझे कि बहुत बड़ा पद है, पद के माध्यम से मैं सब लोगों से संपर्क कर सकती, किसी के पास जाना हो तो भी मुझे जाने की अनुमति मिलती है। मैं अपने आप को यूँ मैसेज नहीं कर सकती कि मैं खुद ऐसे ये नहीं कर सकती हूँ कि वो मुझे डर नहीं है किसी
2: के। आपके घर परिवार में कौन कौन है और वो आपको कैसे मदद करते हैं इन सारी चीजों में?
1: पहले तो नहीं समझते थे, पर उनको लगा कि मेरा नाम न्यूज में आता है, कहीं भी जाती हूँ तो हर कोई भी सम्मानता पूर्वक मुझे देखते, तो उनको भी ऐसे वास्तविक है कुछ ऐसा काम कर रही, तब जाकर इनको ये पद मिला और ये करते, तो फिर वो भी समझ गए कि इसको कहीं भी जाने की जरूरत है, और ये मैंने ऐसा काम भी कराया गाँव में, चलो इसके माध्यम से ये काम हुआ, तो मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते कि ये भी कोई समाज के लिए काम कर रही, गांव के लिए काम कर रही है, सबके हित का काम कर रही है, तो फिर मुझे मना नहीं बोलते, सपोर्ट करते सभी।
2: बिल्कुल, तो आप जो दूसरी महिलाएं हैं जो आपको सुन रही हैं और आपने अपनी शुरुआत जो करी है, आप भी कठिन समय से ही गुजरी हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि बहुत सी बार वो महिलाएं इन सारी चीजों को लेकर सोचती हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती और वो हार मान लेती हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं तो हर महिलाओं को यूं ही कहती हूं कि हर काम असंभव कोई नहीं है, कोई भी काम करने से हल होता है, यूं नहीं कि अब नहीं कर रही हो तो कोई ऐसा अपने जीवन में कोई ऐसा काम तो है ही नहीं अपन नहीं कर सकते यूं।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए मैं हर बार कहीं भी महिलाओं के बारे में बात करती हूँ मेरा खुद का परिचय देती हूँ, मैं यहाँ से मैं ऐसे इससे हम भी गुजरे तब जाकर ये ऐसा हुआ, अपने आप तो कुछ होने वाला है नहीं, कुछ भी करेंगे तभी होगा यूँ।
2: बिल्कुल, और समाज में आपको कौन से ऐसे सबसे बड़ी समस्या लगती है जिसे अभी भी बदलने की जरूरत है महिलाओं को लेकर?
1: महिलाओं को लेकर तो बहुत सारी समस्या है, महिलाओं को लेकर तो क्या है कि हमारे गांव की मेन समस्या ये है कि गांव में रोजगार का अभाव है, तो महिला रोजगार के लिए बाहर नहीं जा सकती है।
2: बिल्कुल,
1: तो कोई ऐसा हो तो गांव स्तर पर महिलाओं के लिए कुछ स्थानीय रोजगार मिले, तो उनका शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार भी मिल जाए, आर्थिक स्थिति भी कमजोर नहीं है उसकी आर्थिक सहायता भी मिल सकती है।
2: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप कार्यक्रम से जुड़ी और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: साथियों, जैसा कि अभी कार्यक्रम के माध्यम से मीरा जी जुड़ी हुई थी और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना कि किस तरीके से जीवन में परेशानियां तो आती ही हैं, लेकिन मन में अगर कुछ करने की चाह है और मैं कर सकती हूँ का जुनून है तो कोई भी महिला अपने जीवन को बदल सकती है। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे उनके जीवन की बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज

0: भाई ने बोलो घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोलो आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हैं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हैं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात की शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
0: साथियों सत्य की राह पर चलते जाएं, अहिंसा का संदेश फैलाएं, गांधी जी के सपनों का भारत बनाएं। जी हाँ सादा जीवन ऊंचे विचार, सत्य अहिंसा बने हमारा आधार, यही है गांधी जी का सच्चा उपहार।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि दोस्तों पिछले रविवार को कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हम जान रहे थे गांधी जी के उपवास प्रकरण के बारे में।
1: बिल्कुल।
0: और अंजलि जी, वो प्रकरण हमारा पूरा हो चुका था। अब यही कार्यक्रम के माध्यम से आज हम एक नए प्रकरण को लेकर बातचीत करेंगे। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सबके गांधी नारी प्रकरण के बारे में।
1: जी हाँ।
0: अगर इस प्रकरण की शुरुआत करें तो साथियों, 1930 में जब गांधी जी ने साबरमती से दांडी जाकर वहाँ नमक बनाकर नमक कानून की सविनय अवज्ञा करने का निर्णय किया था, तब उनके साथ कुछ करने वाले कौन कौन लोग होंगे, इसकी सूची भी उन्होंने ही तैयार की थी। उस सूची में चयनित नाम आश्रम वासियों के ही थे। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: वे स्वयं अपने चयनित साथियों के साथ कानून भंग करे और इसके उपरांत ही पूरे देश के लिए कानून भंग की छूट दी जाती थी। गांधी जी द्वारा बनाई गई कुछ करने वाली सैनिकों की सूची में एक भी महिला का नाम नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: आश्रम की बहनों में इसे लेकर खलबली मच गई। दूसरी कई महिलाओं के साथ इस लेखक की माँ भी गांधी जी के साथ तकरार करने के लिए गई हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: बापू, आपको आश्रम में से एक भी महिला आपके साथ कुछ लायक नहीं लगी क्या? गांधी जी सुनकर थोड़े मुस्कुराए और फिर हंसे। तुमने ये सवाल न पूछा होता तो मुझे आश्चर्य होता।
1: जी जी,
0: मैं जानता ही था कि तुम पूछोगे, पर मैंने तो जानबूझकर तुम्हें कुछ करने वालों से अलग रखा है। यह कहकर गांधी जी ने आश्रम की महिलाओं की आकुलाहट बढ़ा दी। अंजलि जी,
1: बिल्कुल।
0: फिर गांधी जी ने फौरन ही उसका शमन भी कर दिया।
1: बिल्कुल कशित, साबरमती से दांडी तक की कूच में गांधी जी ने अपने साथ एक भी महिला सत्याग्रही न रखने के दो कारण बताए। पहले कारण के विषय में तो बाद में नवजीवन के अंक में भी उन्होंने लिखा था। उन्होंने बताया कि आखिर अपनी लड़ाई अंग्रेज सरकार के खिलाफ है। अंग्रेजों का दावा ऐसा है कि वे स्त्री दक्षिणियों में मानते हैं। हमारे कूच में यदि महिलाएं भी साथ जुड़ी हो तो स्वाभाविक रीति से हम उनको कूच में अग्रिम पंक्ति में रखेंगे। अंग्रेज सरकार कदाचित ऐसा कह सकती है कि कूच में आगे महिलाएं थी, इसलिए हमने अपने स्त्री दाक्षिण्य के कारण उन पर हाथ नहीं उठाया। सरकार को ऐसा कहने का मौका ही न मिले, इसलिए मैंने बहनों को इस कूच से बाहर रखा। सरकार को चाहे जितना हाथ उठाना हो, भले ही हमारे सत्याग्रहों पर उठाए। तकरार करने गई आश्रम की बहनों को इस उत्तर से भी अधिक संतुष्टि गांधी जी के दूसरे उत्तर से मिली। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा ऐसा माना है कि अहिंसक लड़ाई में पुरुषों की बजाय महिलाओं का योगदान होगा।
0: बिल्कुल।
1: इसमें सहन शक्ति अधिक होती है, ये अहिंसक पराक्रम भी अधिक कर सकती हैं। मेरे साथ कुछ करने में कैसे बहादुरी, रोजाना थोड़ा चलना ही तो है ना, उनमें तो जगह जगह स्वागत होगा। आव भगत होगी, पुष्प मालाएं स्वीकार करने में कैसी बहादुरी, बहादुरी के काम तो उसके बाद आएंगे। मैंने आश्रम के बहनों को इसलिए आरक्षित रखा है कि वे अधिक बहादुरी के काम करें। गांधी जी की इस दूसरी बात से आश्रमवासी महिलाओं की शंका समाधान हो गया। उसके बाद वाले सत्याग्रह आंदोलन में बहनों ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर गांधी जी की महिलाओं के बारे में जो आशा और विश्वास था उसे साबित कर दिखाया।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथियों महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, ये बात आज दुनिया के अनेक देशों में चर्चित है।
1: बिल्कुल।
0: यह विचार सैद्धांतिक रीति से जिस हद तक स्वीकार किया गया है उतना अभी क्रियान्वित नहीं हो पाया है।
1: जी जी।
0: गांधी जी ऐसा मानते थे अंजलि जी कि कर्तव्य पालन से ही अधिकार फलित होने चाहिए, इसलिए उन्होंने स्त्रियों संबंधित अपनी आकांक्षाएं व्यक्त कर दी। वहीं श्रोता साथियों, 1930 से 32 के सत्याग्रह आंदोलनों में भारत की हजारों नारियों ने इसे अपना कर्तव्य मानकर ग्रहण कर लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत की नारियों में अद्भुत जागृति आई। नारी शिक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा देने वाले महर्षि कर्वे ने कहा कि इतने वर्षों के मेरे प्रयासों से जागृति नहीं आई, वैसी जागृति गांधी जी के नमक सत्याग्रह से आ गई है। जो महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, वे महिलाएं जुलूसों की अगुवाही करने लगी हैं।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने कितनी ही जेलों में महिलाओं के वार्ड भर दिए, राष्ट्रीय ध्वज की शान के लिए अपने माथे पर पुलिस की लाठियां भी झेली। पेशावर जैसी जगह पर तो उन्होंने हंसते हंसते गोलियों के वार भी झेल लिए। साथियों, अहिंसक आंदोलन में महिलाओं की भूमिका विषयक गांधी जी की श्रद्धा के बीच शायद माता पुतलीबाई की व्रत निष्ठा और कस्तूरबा की दृढ़ता और तीक्ष्णता देखकर बोए गए होंगे। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका गांधी जी के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका के तीसरे सत्याग्रह से शुरू हुई थी। इस सत्याग्रह के दो मुख्य मुद्दों में एक यह था कि दक्षिण अफ्रीका के एक न्यायाधीश ने वहाँ के कानून का अर्थ ऐसा कर दिया था कि जिन लोगों ने ईसाई विधि के अनुसार अथवा कोर्ट में जाकर विधिवत रूप से दर्ज कराकर विवाह किया होगा, बिल्कुल वही कानूनी विवाह माने जाएंगे, दूसरे नहीं। इसका अर्थ यह था अंजलि जी कि भारतीय मूल के जिन लोगों ने हिंदू विवाह पद्धति के मुताबिक विवाह किए होंगे उनके विवाह रद्द समझे जाएंगे।
1: जी हाँ,
0: यानी कि साथियों, इस रीति से विवाहित किसी महिला के पति को दक्षिण अफ्रीका में निवास करने और व्यापार करने का विधिवत अधिकार हो तब भी उसकी विवाहिता के रूप में वह दक्षिण अफ्रीका में ही प्रवेश नहीं पा सकती।
1: बिल्कुल कशिश, यही नहीं, हिंदू या मुस्लिम विवाह पद्धति से जिन्होंने विवाह किए हो उनके संतानें भी उनके विधि सम्मत बालक नहीं माने जाएंगे। दक्षिणी अफ्रीका के भारतीय मूल के लोगों का इस कानून के विरुद्ध जबरदस्त विरोध फूट पड़ा। इस कानून का सक्रिय रीति से विरोध करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस सत्याग्रह में सीधे जुड़ने का निर्णय महिलाओं ने भी किया। सबसे पहले यह निर्णय करने वाली कस्तूरबा ही थी। फिनिक्स आश्रम की अन्य 3 महिलाओं और 12 पुरुषों के साथ उन्होंने बिना इजाजत देश की सरहद पार करके दंडित होने का निर्णय किया।
0: बिल्कुल,
1: उनकी अगुवाई देखकर जोहानिसबर्ग में रहने वाली अन्य कई महिलाएं भी सत्याग्रह से जुड़ गई। तेलुगु और तमिल भाषी सूखे परिवारों की इन महिलाओं ने खानों में जाकर वहां मजदूरी करने वाले गिर मिट्टियों भाई बहनों को आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हमारी बातें चल रही है नारी प्रकरण को लेकर, आगे भी ये बातें हमारी श्रोता साथियों से जारी रहेंगी, लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। जैसा कि नारी प्रकरण के बारे में हमने ढेर सारी बातों को जाना, और गीत से पहले हम जान पाए कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो सरहद पार कर कर भी दंडित होने का उन्होंने निर्णय ले लिया था। यही बात करें तो हजारों की संख्या में गिर मिटिया उमड़ पड़े, अपने घर की चीज वस्तु माथे या पीठ पर लाद कर गिरमिटिया निकल पड़े। कई महिलाओं ने तो कशिश गोद में दुग्ध मुहे बालकों को भी उठा रखा था।
1: बिल्कुल,
0: जंगल के झरने लांगते हुए एक दो महिलाओं के बच्चे हाथ से झिटक कर झरने में बह गए थे, फिर भी कुछ बिना थमे आगे बढ़ता जाता था। बलिदान करने के ऐसे दृश्य देखकर ही शायद गांधी जी को स्त्रियों के बलिदान करने की शक्ति के संबंध में श्रद्धा उत्पन्न हुई होगी। उस समय की जेल में कस्तूरबा को तो उपवास करने की भी जरूरत महसूस हुई थी, इसलिए 3 महीनों की जेल से जब वे छूटकर आई तब उनको उनका पुत्र देवदास भी बड़ी मुश्किल से पहचान सका था। वली अम्मा नामक एक महिला तो जेल यातना के कष्टों के कारण जेल से छूटने के बाद मर गई थी। आज भी उसकी समाधि पर जोहानिसबर्ग की शमशान भूमि में पूजा होती है। श्रोता साथियों, भारत लौटने के बाद गांधी जी ने जो सार्वजनिक काम संभाले थे उनमें से चंपारण सत्याग्रह के समय कस्तूरबा दुर्गा बहन देसाई, मणि बहन पारीक, अवंतिका बाई गोखले, इन महिलाओं ने पुरुषों के साथ काम किया था। उसके बाद वाले सभी सत्याग्रहों में महिलाओं का हिस्सा था ही, पर दांडी कूच के बाद कराड़ी से गांधी जी ने सविनय कानून भंग सत्याग्रह में शामिल होने हेतु महिलाओं से अपील की, जिसके जवाब में लगभग पूरे देश की स्त्री शक्ति जाग उठी। इतिहास में पहली बार भारत में इतनी शक्तिशाली संख्या में महिलाएं बाहर आई। स्थान स्थान पर उन्होंने जेल यातनाएं झेली, जुलूसों में लाठी चार्ज झेला, नमक बनाया, शराब के अड्डों पर विलायती कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग की।
1: बिल्कुल साथियों, गांधी जी वैसे तो स्त्री पुरुष दोनों को समान मानते थे, लेकिन शारीरिक दृष्टि से स्त्रियां भले ही पुरुषों से दुर्बल हों, आत्मा के गुणों की दृष्टि से देखें तो वे पुरुषों की तुलना में जरा से भी न्यून नहीं थी। अंजलि जी,
2: जी जी,
1: ऐसा गांधी जी का विश्वास था। बल्कि करुणा, सहिष्णुता गुणों में स्त्रियां पुरुषों से बढ़कर है, ऐसा गांधी जी मानते थे। वे ये भी मानते थे साथियों कि स्त्री और पुरुषों दोनों को एक दूसरे के गुण विकसित करने के प्रयास करने चाहिए।
2: जी जी,
1: यदि पुरुष स्त्रियों की मृदुता, स्नेह, सहनशीलता जैसे गुण अपने में विकसित करे, और यदि स्त्रियां पुरुषों के पराक्रम, निर्भयता, दृढ़ता से इन सभी गुणों को विकसित करे तो दोनों का व्यक्तित्व परिपूर्ण होगा।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए अपने संपर्क में आने वाली स्त्रियों को वे पुरुषों वाले गुण विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं, और पुरुषों को स्त्रियों के विशिष्ट गुण विकसित करने का अवसर प्रदान करते थे।
2: जी जी,
1: वहीं श्रोता साथियों, मनु बहन गांधी द्वारा वर्णित किस्सा तो मशहूर है। नोआखाली में वहाँ सांप्रदायिक संहार के बाद गांधी जी पद यात्रा कर रहे थे। अंजलि जी, उनके साथ उनकी सेवा में 16 से 17 वर्षीय मनु बहन थी। वहाँ का वातावरण भयानक था।
2: बिल्कुल,
1: वहाँ बड़ी संख्या में हत्याएं हो चुकी थी और भय कम नहीं हो रहा था। एक दिन गांधी जी के पैर घिसने वाला पत्थर मनु बहन से पिछले आवास पर रह गया। पत्थर तो वैसे बहुत मिल जाते, पर गांधी जी ने कहा कि इस तरह हमसे चीज बस्त विस्मृत ही क्यों होती है। उन्होंने मनु को उसी क्षण वापस जाकर वह पत्र ढूंढ कर लाने को कहा।
2: बिल्कुल
1: साथियों, संघन झाड़ियों वाला सुना रास्ता था, मनु के मन में थोड़ा डर तो था ही। उन्होंने पत्थर ढूंढने जाने के लिए गांव से एकाध स्वयं सेवक को साथ लेने की अनुमति मांगी।
2: जी जी,
1: पर गांधी जी भला क्यों देते, रास्ते बुलावे से पड़ जाए। ऐसे नारियल और सुपारी के वन में से मनु राम नाम लेती निकली और बड़ी मुश्किल से वह पत्थर ढूंढ कर ले आई।
2: बिल्कुल,
1: वापस आकर गांधी जी की गोद में वह पत्थर रखते हुए और किसी त्रास से छुटकारा मिलने के कारण और कुछ अपनी भूल के पश्चाताप के कारण मनु को रोना आ गया। अंजलि जी,
2: बिल्कुल,
1: गांधी जी ने उनसे कहा, आज तेरी परीक्षा हुई और तू उसमें पास हो गई।
0: बिल्कुल, जिस तरीके से कशिश कार्यक्रम में हमने जाना नारी प्रकरण में ढेर सारी बातों को, अगले रविवार को फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकरण में नई चर्चा के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन से जाने की। आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को नमस्कार।
3: तो साथियों, सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
1: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
2: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा, ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है, अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है।
6: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
5: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है, ये हुके जाएंगा। खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुके जागा।
6: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
5: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
6: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
5: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

साथियों, पंचशील के शिलों में हर मानव का उत्थान छिप, सारनाथ के स्तंभों में बुद्ध का वो विज्ञान छिपा, सत्य अहिंसा से आलोकित विश्व धरा करने वाले तक्षशिला और नालंदा में विश्व ज्ञान भरने वाले सर्व धर्म सद्भाव जगाता दिल में स्वाभिमान, हर ग्रंथ से पावन है मेरे भारत का संविधान।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से बातचीत चल रही थी कि कैसा संविधान चाहते थे गांधी जी, उसमें हमने ढेर सारी बातों को जाना। यहीं आज हमारे बीच में एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। आज हम जानेंगे कि गांधी जी के सपनों की राज व्यवस्था क्या थी।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं सोचा था कि ग्राम पंचायतें सरकार के नियंत्रण और निर्देशों से संचालित होगी। जातिवादी और लैंगिक भेदभाव से भरा पूरा समाज होने के बावजूद उन्हें पता नहीं क्यों यकीन था कि गांव और पंचायतें न्याय और समानता के मूल्यों के आधार पर अपनी भूमिका निभाएगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि भारत के गांव शोषण के केंद्र हैं, अतः इन्हें स्वतंत्र शक्ति नहीं दी जा सकती।
1: साथियों, महात्मा गांधी की ओर से कल्पित संविधान में पंचायत, तालुका और जिला पंचायत की व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। उनका सपना था कि गांव के स्तर पर ही चुनाव हो और वहां से चुने गए प्रतिनिधियों को तालुका, जिला और राज्य सरकारों में स्थान मिले।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ अंजलि, पंचायत, तालुका और जिला पंचायत के बारे में हम हमारे श्रोता साथियों को बताएं तो राज्य व्यवस्था की मूल इकाई पंचायत होगी। हर गांव अपनी पंचायत का गठन करेगा जिसमें 5 से 11 सदस्यों का चुनाव समुदाय द्वारा किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 बार चुना जा सकेगा। पंचायत को ग्राम सेवकों जैसे चौकीदार, पटवारी और पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने और पद से हटाने का अधिकार होगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, हम देखते हैं कि पंचायत गांव में अखाड़े, व्यायामशाला, खेल के मैदान की व्यवस्था करेगी, स्थानीय खेलों, कला शिल्प को प्रोत्साहित करेगी, सभी उत्सवों को मिलकर आयोजित करेगी और मेले का आयोजन भी करेगी।
1: जी हाँ,
0: गांव की चोरी, अपराधों और जंगली पशुओं की सुरक्षा के लिए गांव संरक्षकों की व्यवस्था करेगी, सभी नागरिकों को सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध का प्रशिक्षण प्रदान करेगी, कृषि भूमि के लगान का निर्धारण और एकत्रीकरण करेगी, सहकारिता कृषि को प्रोत्साहित करेगी, सिंचाई के साधन बढ़ाएगी, अच्छे बीजों की व्यवस्था करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि गांव की जरूरत का खाद्यान्न और खाद्य सामग्री में ही उत्पादित हो और वर्तमान वाणिज्यिक खेती को निरुत्साहित करेगी।
1: बिल्कुल अंजलि, और गांव में स्वच्छता रखना और जल निकास की व्यवस्था बनाए रखना, महामारी को फैलने से रोकना, पीने के साफ पानी की व्यवस्था करना, गांव में अस्पताल और प्रसूति गृह की स्थापना करना और उसका संचालन करना, यहां सभी नागरिकों को मुफ्त उपचार हासिल होगा, इन स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की पारंपरिक विधाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: इसी के साथ खादी का उत्पादन बढ़ाना, सहकारी ग्राम उद्योग, दूध उत्पादन, पशुपालन को व्यवस्थित करना, मृत पशुओं के चमड़े के इस्तेमाल के लिए कारखाने चलाना, कृषि और ग्राम उद्योग के उत्पादन का सहकारी विपणन, उपभोक्ता समितियों का संचालन, अतिशेष सामग्री का बाहर विक्रय या निर्यात, सहकारी भंडार गृह की व्यवस्था और गांव के कारीगरों को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना।
0: जी बिल्कुल।
1: व्यवस्था चलाने के लिए कर्ज उठाना, श्रम का भंडार बनाना, आय और व्यय के खातों को व्यवस्थित करना।
0: जी बिल्कुल,
1: ये सारे कार्य पंचायत के हैं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। अगर यही बात करें तालुका पंचायत की, तो श्रोता साथियों, गांवों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए तालुका तहसील स्तर की और जिला स्तर की पंचायत होगी। गांव पंचायत से ऊपर की इन पंचायतों की भूमिका और काम परामर्शी होंगे, न कि आदेशात्मक। तालुका और जिला पंचायत ग्राम पंचायत को अपने अधीन नहीं रखेगी। ग्राम पंचायतों के चुने हुए अध्यक्ष प्रमुखों से मिलकर तालुका तहसील पंचायत का गठन होगा।
1: जी हाँ।
0: सामान्यतः 20 पंचायतों या 20,000 की जनसंख्या पर यह पंचायत होगी। इसका कार्यकाल भी 3 साल का होगा और तालुका तहसील पंचायत ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन करेगी और उनके खातों का अंकेषण करेगी। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, बड़े स्कूलों, संरक्षकों की व्यवस्था, तालुका स्तर की सहकारिता समितियों और बैंकों की व्यवस्था, गांवों के बीच सड़कों का निर्माण, खेलों को प्रोत्साहन और कृषि की बेहतरी के लिए सतत प्रयास करेगी।
1: जी हाँ बिल्कुल। इसी के साथ जिला पंचायत की बात करें अंजलि, तो तालुका पंचायतों के अध्यक्षों या प्रमुखों से मिलकर जिला पंचायत का गठन होगा।
0: जी हाँ।
1: जिला पंचायत के तहत 12 से ज्यादा तालुका पंचायत नहीं आएंगी। जिला पंचायत तालुका पंचायतों का मार्गदर्शन करेंगी और उनके खातों का अंकेषण करेंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: महाविद्यालय, बड़े और विशेष अस्पतालों, जिला संरक्षकों की व्यवस्था, जिला स्तर की सहकारिता समितियों और बैंकों की व्यवस्था, सड़कों के निर्माण, खेलों को प्रोत्साहन और कृषि की बेहतरी के लिए सतत प्रयास करेंगी। जिला पंचायत प्रांतीय सरकारों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और संपर्क में रहेगी।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से गांधी जी के सपनों की राज व्यवस्था को जान रहे हैं, हमने जाना पंचायत, तालुका और जिला पंचायत के बारे में। आगे हम जानेंगे नगर परिषद, केंद्रीय सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका, चुनाव और इसी के साथ अल्पसंख्यक, विदेशी नीति के बारे में। लेकिन क्यों ना हमारे दोस्तों को हम यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथ ही सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में। और जैसा कि हमारी बातें बहुत ही अच्छी चल रही थी गांधी जी के सपनों की राज व्यवस्था को लेकर, हमने पंचायत, तालुका और जिला पंचायत के बारे में जाना था, यही जानते हैं नगर परिषद के बारे में।
1: जी बिल्कुल।
0: जैसा कि अंजलि, नगर परिषद के बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताएं तो नगरों में वार्ड पंचायत और नगर परिषद होगी जी। इनके पास ठोस कार्यपालिका और विधायी शक्तियाँ होंगी। इनके काम लगभग उसी तरह के होंगे जिस तरह के जिला पंचायतों के तय किए गए हैं।
1: जी जी।
0: नगर परिषद परिवहन, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति की व्यवस्था का काम करेंगी। प्रांतीय सरकार जिला पंचायतों और नगर परिषद अपने अध्यक्ष या प्रमुखों को प्रांतीय पंचायत में भेजेगी। यदि प्रांत छोटा होगा तो जिला पंचायतें और नगर परिषद एक से अधिक प्रतिनिधि प्रांतीय पंचायत में भेज सकेंगी। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा और वर्ष में 2 बार इसकी बैठकें होंगी।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखें तो प्रांतीय पंचायत उस प्रांत की विधायिका की भूमिका में होगी। यह अपने अध्यक्ष का चुनाव करेगी जो प्रांत का अध्यक्ष होगा। प्रांत की भाषा में ही प्रांतीय पंचायत की कार्यवाही होगी और प्रांतीय पंचायत कार्यपालिका कामों के लिए 5 से 9 मंत्रियों या आयुक्तों की नियुक्ति करेगी।
0: जी हाँ।
1: ये नियुक्ति चुने हुए लोगों में से नहीं होगी। इनकी नियुक्ति दलीय या सांप्रदायिक आधार पर नहीं होगी।
0: बिल्कुल। इसी के साथ अगर केंद्रीय सरकार के बारे में बात करें तो सभी प्रांतीय पंचायतों के अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत का गठन करेंगे। जो बड़े प्रांत है वहाँ अध्यक्ष के अलावा एक अन्य सदस्य अखिल भारतीय पंचायत में प्रतिनिधित्व कर सकेगा।
1: जी जी।
0: साथ ही केंद्रीय विधायिका भी होंगी। केंद्र सरकार या अखिल भारतीय पंचायत विदेशी हमलों से देश की सुरक्षा करेगी, राष्ट्रीय संरक्षित समूह की व्यवस्था करेगी, आर्थिक विकास के लिए प्रांतीय सरकारों को कार्य योजना बनाने में मदद करेगी, देश की जरूरतों के मुताबिक मुख्य उद्योगों का संचालन करेगी, मुद्रा सीमा शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन करेगी।
1: यही बात करें जागृति जी प्रशासन की तो श्रोता साथियों, अखिल भारतीय पंचायत मुख्य विधायी संस्था होगी और इसका अध्यक्ष राज्य का प्रमुख होगा। संघीय पंचायत विभिन्न विभागों के लिए मंत्री या आयुक्त नियुक्त करेगी। अखिल भारतीय पंचायत के सदस्य सरकार के मंत्री या आयुक्त नहीं होंगे। यानी विधायिका और कार्यपालिका का काम बिल्कुल भिन्न भिन्न होगा।
0: जी हाँ।
1: मंत्रियों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा और सभी समुदायों और तबकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
0: बिल्कुल। इसी के साथ साथियों, न्यायपालिका के बारे में बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा नियोजित न्यायिक व्यवस्था ने भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है।
1: जी जी।
0: एक समय था अंजलि जब भारत में पंचायतें दीवानी और आपराधिक मामलों में प्रकरणों की सुनवाई और निपटारा किया करती थी। वह व्यवस्था लोगों की पहुंच में और सस्ती थी। इसके उलट वर्तमान न्यायिक व्यवस्था बहुत महंगी है।
1: जी जी।
0: इसमें कोई समयबद्धता नहीं है। वर्तमान जटिल न्यायिक व्यवस्था अंतहीन झूठ और बेईमान का विस्तार करती है।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम बात करें जागृति जी चुनाव की तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया के अनुसार भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था होगी।
0: जी हाँ।
1: ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए चुने जाएंगे जबकि तालुका, जिला प्रांतीय और अखिल भारतीय पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनावों के जरिए होगा। इसके धन का अपव्यय नहीं होगा और लापरवाह और गैर जरूरी राजनीतिक दलों की संख्या में भी बेहताशा बढ़ोतरी नहीं होगी।
0: बिल्कुल।
1: इससे राजनीति और व्यवस्था का सांप्रदायिकरण भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल। इसी के साथ अल्पसंख्यक को लेकर हम बात करें अंजलि तो इस दस्तावेज में पूरे तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या के आधार पर प्रावधान किया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने ही सांप्रदायिकता के बीच बोए और पृथक प्रतिनिधित्व या निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के जरिए हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई रच दी। आगा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की।
1: जी बिल्कुल।
0: बहरहाल भारत के लिए ब्रिटिश सरकार के सचिव लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को लिखा कि मैं भारत में मुस्लिमों के संबंध में शुरू हुए विवाद पर फिर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पृथक प्रतिनिधित्व की अतिरिक्त मांग आपकी शुरुआती भाषण से ही स्थापित हुई। रामसे मैकडोनल्ड ने अवेकिंग इंडिया में लिखा है कि ब्रिटिश अधिकारी ही भारत में सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग के बीच बो रहे थे। द गांधियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया में कहा गया था कि भारत का विभाजन या पाकिस्तान का निर्माण होने से मुस्लिम अल्पसंख्यकों की समस्या का निराकरण नहीं होगा।
1: जी हाँ।
0: अल्पसंख्यकों के अधिकारों और प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था बनाने के लिए संविधान सभा की एक समिति बनाई जा सकती है। हिंदू और मुसलमानों की समस्याओं की बुनियाद में अति गरीबी है। स्वराज के माध्यम से इनकी आर्थिक बदहाली को खत्म किया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल। यही बात करें जागृति जी विदेश नीति की, तो हम देखते हैं कि भारत फास्टिस्ट नीतियों और व्यवहार के साथ खड़ा नहीं होगा।
0: जी हाँ।
1: इसलिए भारत ने न्यूमिक पैक्ट का विरोध किया, चीन में जापान के दखल का भी उन्होंने विरोध किया। इसी के साथ श्रोता साथियों, वित्त और कराधान की बात करें तो भारत में निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके समांतर रूप से संपत्ति का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था बनाने की दिशा में पहल की जाएगी।
0: बिल्कुल, इसी के साथ अंजलि, अगर शिक्षा को लेकर हम बात करें तो 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें कला, शिल्प, बुनकारी और कृषि सरीखे कौशल अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। किसी भी परिस्थिति में बच्चों को स्कूल में या शिक्षा संस्थानों में सजा या दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षा मातृभाषा में प्रदान की जाएगी।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ जागृति जी बात करें अपराध और सजा की, तो श्रोता साथियों, अपराध करने वाले के प्रति निष्ठुर नहीं होंगे।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है और सभ्यता का यही पैमाना होना चाहिए कि हम अपराधी को और कठोर और स्थायी अपराधी बनाने वाली जेलें न बनाएं। विश्लेषण बताते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और परिवार के झगड़ों के कारण व्यक्ति अपराधी बनता है।
0: बिल्कुल,
1: अपराध खत्म करने के लिए हमें समाज के वातावरण और परिस्थितियों में सुधार करना होगा।
0: जी हाँ, इसी के साथ अंजलि, गांधी जी का संविधान एक सपना हो सकता है, वास्तविकता नहीं, लेकिन दुखद बात यह है कि गांधी जी के सपने को उनके अलावा किसी और ने अपनी आंखों में नहीं उतारा।
1: जी हाँ।
0: इस बात से वे भी वाकिफ थे क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत जटिल थी, उन्हें भी वास्तविकता का एहसास था, इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि दुनिया में अगर कोई एकाध गांधीवादी है तो वे खुद हैं। आज जब भारत में पूरा विश्व आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य के संकट से जूझ रहा है, तब गांधी जी की आंखों में जन्मे इन सपनों को सक्रिय करने की पहल होनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ श्रोता साथियों, गांधी किसान, मजदूर, महिलाओं और किसी भी अन्य व्यक्ति की नजर मन और आत्मा से जीवन को देखते थे। किसी भी लक्ष्य और उसे हासिल करने के माध्यम को चुनने के लिए नीति बनाने वालों में, यानी राज व्यवस्था में, यही चरित्र होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने जाना गांधी जी के सपनों की राज व्यवस्था के बारे में, जिसमें पंचायत, तालुका और जिला पंचायत के बारे में जाना, इसी के साथ हमने नगर परिषद के बारे में, प्रशासन, न्यायपालिका, केंद्रीय सरकार, साथ ही हमने अल्पसंख्यक, विदेशी नीति, वित्त और कराधान, शिक्षा, अपराध और सजा के बारे में जाना।
1: जी बिल्कुल,
0: अगले रविवार ये कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हम जानेंगे गांधी और समानुभूति के बारे में। तब तक के लिए हम हमारे श्रोता साथियों से इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल
0: साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, निमक का ताकत भी भरपूर, पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानो सोड़।

0: ਰਹੀ ਹੈ।
1: ਹੋਵੇ ਜੇ ਵਰੇ ਸਭ ਸੋਰਾ ਫੜੇਗਾ ਤਾਰੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਅਗਾੜੀ ਵਧੇਗਾ।
0: ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸਪਨਾ ਅਧੂਰਾ, ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ।
1: ਵਾਗ ਰੇਡੀਓ ਵਾਗਧਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ।
2: ਮੈਂ ਅਣੀ ਮਾਟੀ ਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੂੰ, ਅਣੀ ਮਾਟੀ ਤਕੀਸ ਜਾਣੀ ਜਾਊਂ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਖੇਤ ਹੰਬਾਰਿਆ, ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਸਲ ਬਹਾਈ ਵੋ ਵਿਸ਼ਰਮ ਕਰੂ, ਤੋ ਪਸੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਤੇ ਮਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਨ ਨਤੀ। ਸੂਰੀ ਜਨਮ ਤਕੀਸ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੇ ਆ ਬਾਤ ਮਾਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੜਿਆ ਪੂਟੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਕੋ ਲੈ ਸਕੇ, ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਅਣਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਸਕੇ।
3: ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ।
1: ਵਾਗੜ ਰੇਡੀਓ ਏਵਮ ਵਾਗਧਾਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਮੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ। जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
6: हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वार रविवार का दिन है और आज ही के दिन हम कार्यक्रम दादी माँ की रसोई को लेकर हाजिर होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नए नए व्यंजनों को आपको बताते हैं ताकि आप इन व्यंजनों को घर पर आसानी से बना सको। तो साथियों, आज मैं आपको एक और व्यंजन के बारे में बताने वाली हूँ और उस व्यंजन का नाम है रागी का चिल्ला। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि रागी का चिल्ला कैसे बना सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, साथ ही उसका क्या महत्व है। ये सारी बातें हम जरूर करेंगे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में, लेकिन शुरुआत में हमारा दस्तूर है कि हम आपको मनोरंजन करवाते हैं, तो पहले सुनवा देते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज मैं आपको एक रेसिपी बताने वाली हूँ, उस रेसिपी का नाम है रागी का चिल्ला। तो दोस्तों, जानते हैं कि रागी का चिल्ला कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, साथ ही रागी के चिल्ले के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमारे स्टूडियो में प्रतिभा जी आए हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से रागी का चिल्ला बनाया जाता है और उसका क्या महत्व है। तो पहले सुन लेते हैं उन्हीं की बातों को, फिर हम हमारी बातों को जारी रखेंगे।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जुड़ रही हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूँगी।
2: अंजलि जी नमस्ते, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतिभा यादव है और मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है प्रतिभा जी, तो आज कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोता साथियों को कौन से व्यंजन की विधि के बारे में बताना चाहेंगी जिसमें परंपरागत पोषण भी है और स्वाद से भी भरपूर है।
2: अंजलि जी, जैसे कि आपको पता ही है कि मिलेट्स का उपयोग पहले काफी होता था, लेकिन समय के साथ साथ ये हमारी थाली से दूर हो गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: अब इन्हें फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि ये पौष्टिक होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। इस कड़ी में मैं आज आपको और अपने श्रोता साथियों को रागी से एक स्वादिष्ट और आसान रेसिपी बनाना बताऊंगी।
1: बिल्कुल,
2: जिसका नाम है रागी का डोसा।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने मिलेट्स की बात की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ये मोटे अनाज होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें रागी जो है वो बहुत ही पौष्टिक होती है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जैसा कि आपने भी बताया कि ये हमारे खाने से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो जैसा कि आप रागी का डोसा बनाना हमें बताने जा रही हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए हमें सामग्री क्या चाहिए और इसे बनाने का क्या तरीका है।
2: जी अंजलि जी, तो सभी श्रोता साथी पेन और कॉपी लेकर सामग्री को नोट कर लें। रागी का आटा आधा कप ले लीजिए, नमक स्वादानुसार, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट एक चम्मच और पानी। पानी हमें उतना लेना है जैसे अगर हमने आधा कप लिया है तो उसका डेढ़ गुना पानी लेना है।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने ये सामग्री बताई है और आशा करते हैं कि ये सामग्री हमारे श्रोता साथियों ने लिख ली होगी, तो अब इसे बनाने का क्या तरीका है उसके बारे में आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए।
2: जी अंजलि जी, सबसे पहले एक बाउल ले लीजिए, उसमें जो ये आधा कप हमने रागी लिए है ना उसको डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि ये गुठलियां ना पड़े, लम्स ना पड़े। फिर मतलब बैटर को इतना पतला रखना है आपको कि आसानी से डोसा बन जाए।
1: बिल्कुल,
2: इसमें पानी अच्छे से मिला लिया आपने, गुठलियां नहीं हुई, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 15 मिनट के लिए ढककर आप रख दीजिए।
1: जी जी,
2: फिर इसके बाद इसमें देख लीजिए 15 मिनट के बाद इसमें नमक एक चम्मच, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट और इसे फिर अच्छे से आप मिला लीजिए।
1: बिल्कुल,
2: ठीक है। अब आप एक तवा ले लीजिए, अगर आपके घर में डोसा बनाने वाला तवा है तो भी ठीक है, अगर नॉर्मल तवा है वो भी चलेगा।
1: बिल्कुल,
2: ठीक है। इसको गर्म कर लीजिए और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब बहुत ज्यादा गर्म है तो वो एक नॉर्मल आ जाएगा। फिर उसके बाद एक चमचा लीजिए और बैटर को अच्छे से एक बार चला लीजिए, क्योंकि वो 15 मिनट रखा था ना तो उसमें एक सार हो जाए ताकि।
1: बिल्कुल,
2: फिर चमचे से तवे पे चारों तरफ उसको
1: फैला देना,
2: फैला दीजिए।
1: बिल्कुल,
2: फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसमें एक डेढ़ चम्मच चारों तरफ फैला दीजिए घी, अगर आप घी खाते हो, तेल खाना है तो तेल करके, फिर थोड़ी देर उसको पकने दीजिए, मीडियम आंच कर लीजिए।
1: जी जी,
2: फिर उसके बाद आप उसको देखेंगे कि किनारे किनारे तवा छोड़ने लगा है तो इसके मतलब आपका डोसा तैयार है।
1: बिल्कुल,
2: फिर उसको आप तवे से बाहर निकाल लीजिए।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि हमें डोसा कैसे बनाना है और किस तरीके से बहुत ही आसानी से हमारे जो श्रोता साथी हैं वो रागी का डोसा बना सकते हैं, तो इसे हमारे श्रोता साथी किसके साथ खा सकते हैं? हम देखते हैं कि डोसा जो है उसे खाने के लिए हमें कुछ चटनी या कुछ ऐसी चीज की जरूरत होती है, तो आप कौन सी व्यंजन की विधि बताना चाहेंगी जिसके साथ हमारे श्रोता साथी इसे खा सके?
2: जी अंजलि जी, इसके साथ आपको मूंगफली की चटनी, जिसको हम सींग दाना भी बोलते हैं, उसकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी।
1: बिल्कुल,
2: उसके लिए सभी श्रोता साथी पहले तो सामग्री नोट कर लें। सिकी हुई मूंगफली ले लें एक कटोरी, रोस्टेड चना, जो चना आता है ना,
1: बिल्कुल,
2: उसके ऊपर छिलके लगे रहते हैं, छिलके हटा के और चना चना कर लें, वो आधी कटोरी, ठीक है। लहसुन की कलियां 10 से 12 ले लें, हरी मिर्च 2 से 3, और आप अपने स्वाद के अनुसार भी जितना तीखा खा सकते हो उतना ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: अदरक 1 छोटी चम्मच, नमक और पानी, और थोड़ा सा दही चाहिए बस।
1: बिल्कुल, तो इस तरीके से उन्हें मूंगफली की ये सामग्री इकट्ठा कर लेनी है। इसे बनाने का क्या तरीका है?
2: बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है अंजलि जी। एक ग्राइंडर ले लीजिए आप, ठीक है। ग्राइंडर जार में आप ये सारी चीजें डाल दीजिए, मूंगफली, रोस्टेड चना, लहसुन की कली, हरी मिर्च, अदरक, नमक, पानी और 1 चम्मच दही डाल के इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला दीजिए और उसको निकाल लीजिए।
1: बिल्कुल।
2: अब इसको और अच्छा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम एक छोटा सा मतलब तड़का लगा देंगे। तो एक आप चमचे में तेल ले लीजिए, एक बड़ा चम्मच, और फिर उसमें राई डाल दीजिए, उड़द की दाल 1 चम्मच डाल दीजिए, 2-3 लाल मिर्च जो साबुत होती है ना वो डाल दीजिए, करी पत्ता डाल दीजिए लास्ट में, वो हो जाए, उसको चटनी के ऊपर, जो बाउल में निकाली हुई चटनी है उसके ऊपर डाल दीजिए, फिर इसके साथ आप परोस के खा सकते हैं, घर वालों को अच्छे से खिलाइए।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने मूंगफली की चटनी के बारे में बताया है और जो तड़के की विधि आपने बताई है वो हमारे श्रोता साथी जो है वो हर चटनी में अपना सकते हैं। इससे चटनी जो है वो 1-2 दिन अच्छे से चलती है अगर हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो जैसा कि कार्यक्रम में आप बहुत अच्छी बातों से हमें अवगत करवा रही हैं और हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है कि बीच बीच में हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को गीत संगीत सुनाते हैं, तो क्यों ना आपकी ही पसंद का एक प्यारा सा गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
2: मुझे ये गीत बहुत पसंद है जिसका नाम है एक प्यार का नगमा है।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: जैसा कि प्रतिभा जी आपकी पसंद का बहुत ही प्यारा सा गीत हमने और हमारे श्रोता साथियों ने सुना, और गीत के साथ में जब हम खाने पीने की बातें करते हैं तो मजा ही कुछ और होता है। तो जैसा कि ढेर सारी बातों से आपने हमें अवगत करवाया, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि रागी को खाने के क्या फायदे हैं, वो भी आप हमारे श्रोता साथियों को बता दीजिए, क्योंकि हर चीज के कुछ बेनिफिट्स होते हैं और जब उनके लाभ हमें पता होते हैं तो उसको खाने का मजा हमें और अच्छे से आता है।
1: जी अंजलि जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं आपको बताती हूँ कि रागी को खाने से क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको। एक तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी।
0: बिल्कुल।
1: इसमें दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है जो दांतों और हड्डियों का विकास करता है। दूसरा, आप इसमें ब्लड शुगर भी कंट्रोल होता है। इसमें एक कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वजन कम करता है, मतलब फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है जिससे बार बार आपको भूख नहीं लगती है।
0: बिल्कुल।
1: खून की कमी को भी ये दूर करता है, मतलब आयरन की जब भरपूर मात्रा शरीर में हीमोग्लोबिन और खून की कमी को यानी कि एनीमिया को दूर करती है। पाचन शक्ति बढ़ाता है, मतलब उच्च फाइबर कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं में भी ये राहत दिलाता है। और सबसे बड़ी चीज है, ये तनाव भी कम करता है। इसमें मौजूद जो एमिनो एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो मानसिक तनाव को प्राकृतिक रूप से कम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी अंजलि जी।
0: तो जैसा कि आपने इसके बेनिफिट्स बताए हैं, और अभी के समय में हम जैसा कि देख रहे हैं कि तनाव, खून की कमी होना, कई शारीरिक जो समस्याएं हैं वो श्रोता साथियों को होती ही रहती है, और रागी जो कि इन सारी चीजों को पूरा करता है। तो आशा करते हैं कि ये जो बातें रही हैं वो श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी और वो घर पर इन सारी चीजों को बनाकर अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी लोगों को खिलाएंगे। तो प्रतिभा जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप कार्यक्रम से जुड़ी और बहुत ही प्यारी सी रेसिपी के बारे में आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया।
1: धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।
2: जैसा कि दोस्तों आज हमारे बीच में प्रतिभा जी जुड़े हुए थे और उनके साथ हमारी रेडियो साथी अंजलि जी बात कर रहे थे। प्रतिभा जी ने बताया कि रागी का चिल्ला कैसे बन सकता है, उसके लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, और साथ ही रागी के महत्व के बारे में बताया। यही मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगी कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रागी एक पौष्टिक मोटा अनाज है जिसे मंडुआ भी कहा जाता है। इसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर और बहुत सारे आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पारंपरिक अनाज होने के साथ साथ आज के समय में संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन सकता है। रागी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि पौष्टिक आहार है। रागी में कैल्शियम और फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये हमारे लिए हड्डियों के लिए भी उपयोगी है, पाचन के लिए भी अच्छी है। साथ ही लंबे समय तक तृप्ति यानी कि रागी से बने खाद्य पदार्थ पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। रागी अपेक्षाकृत कम पानी में भी उगाई जा सकती है और कई क्षेत्रों की जलवायु के अनुकूल है, इसलिए हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी रागी बहुत उपयोगी है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि परंपरागत अनाज का संरक्षण भी हम कर सकते हैं, जैसे कि रागी जैसे मोटे अनाज हमारी कृषि और खाद्य परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे श्रोताओं कि रागी को हमें अपनाना है, पौष्टिकता बढ़ानी है और अपने पारंपरिक अनाजों को फिर से थाली में सम्मान दिलाना है, क्योंकि रागी केवल एक अनाज नहीं बल्कि पोषण, परंपरा और टिकाऊ खेती का सुंदर संगम है। हमारी थाली में रागी जैसे मोटे अनाजों की वापसी हमें अपनी पारंपरिक खाद्य विरासत से जोड़ने के साथ साथ बेहतर और संतुलित भोजन की ओर भी ले जा सकती है। इसीलिए आइए रागी को अपनी थाली में हम स्थान दें, स्थानीय अनाजों को सम्मान दें और स्वस्थ परिवार के साथ मजबूत किसान और समृद्ध कृषि की दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाएं, क्योंकि कहा गया है कि मोटा अनाज अपनाएंगे पोषण और परंपरा दोनों को बचा पाएंगे। इन्हीं जन पंक्तियों के साथ और इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप भी रागी के चिल्ले को बनाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि समय हो चला है जाने का। पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और आशा है कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से, रागी के चिल्ले के बारे में बताया, रागी के महत्व के बारे में बताया, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। आप हमें ईमेल के द्वारा आपकी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले रविवार को एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम दादी माँ की रसोई से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने मैं देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है, ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दो।
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।